FM बैंड 101.9 MHz पर ये विविध भारती का उदयपुर केंद्र है FM रेडियो लेक सिटी। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारे प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: 101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजना

0: योजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

बातों में बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा भी अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216। 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। प्रस्तुति है मनीषा जैन की। सुनिए इस श्रृंखला का 11वां भाग। भूले इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए सखी सहेली। 4 हेलो फरमाइश। 5 छाया गीत। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का 2रा भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 8 हवा महल में सुनिए नाटिका कटते कगारे। लेखन है चंद्र भारद्वाज का। निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 10 सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। माफ कीजिएगा, 9 आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकेयी तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। ये है इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में, ताल जो बज रहा है उसमें अपना कुछ दे करके, जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है, वो उस गीत की जरूरत होती है। जैसे आर डी बर्मन साहब का एक एल्बम है दिल पड़ोसी है,
2: हाँ।
1: उसमें जो गीत है उसकी झलक पहले सुनते हैं।

0: दिल पड़ोसी है एल्बम से ये जो गाना था गुलजार साहब की रचना है, आशा जी के स्वर में हमने सुनी, और इस रचना में जो ताल बज रहा था वो स्वयं उस गीत के लिए आरडी साहब ने
1: कंपोज किया था
0: या उसे बनाया था, ये कह सकते हैं। ऐसे ही प्रयोग धर्मिता फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल देखने को मिलती है। और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है।
0: जी।
1: तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं
0: जी,
1: तब मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, तो उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोज़र भी रहे हैं। अण्णा जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है, गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए
0: जी,
1: ये तय करने

0: वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं, और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं।
1: अच्छा।
0: और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें
1: जी,
0: लाएंगे
1: जी।
0: तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो, जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले ऐसे एक साथ बिठाए,
1: रिदम सेक्शन को बढ़ाया,
0: रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक्स है लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तब वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है, तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं
1: जी।
0: और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर भई पनघट पर मुहे नटखट श्याम सताए,
1: बहुत सुंदर रचना है,
0: उसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।
1: तो क्यों ना इस गीत की झलक सुन ली जाए।
0: बिल्कुल।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रविंद्र जी, इस विश्व की, इस दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे जीवन के, सभी के जीवन की अलग अलग लय है। एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध किया जा सकता है?
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में

0: काल के बारे में बात की है,
1: जी
0: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं, तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूँगा।
1: जी
0: पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है वो ताल, जैसे सूरज का रोज सुबह आना, शाम को सूरज का ढलना,
1: जी
0: फिर दूसरे दिन सुबह आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, ताल चक्र जिसे हम कहते हैं।
1: जी
0: सम है, काल है, फिर सम आई, फिर काल आया। तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको ताल खिलता हुआ दिखेगा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के
1: इर्द गिर्द चक्कर लगा
0: इर्द
1: रही
0: गिर्द
1: है।
0: चक्कर लगाती है, तो उसमें भी एक ताल है।
1: जी
0: पूरे सृष्टि में जब अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक ताल होता है।
1: जी
0: तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा तालमय है। घड़ी की टिक टिक जिस समय के साथ में हम लोग चलते हैं
1: जी जी
0: वो भी एक ताल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय जो है
1: जी हाँ
0: वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल हमारा सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो।
1: जी हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: तालमेल जो है ये मेल होना ज़रूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है।
1: क्या बात है।
0: मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन स्वर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है,
1: जी
0: और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है। मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है,
1: जी
0: और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है।
1: जी। तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
0: पलकों की छाँव में इस
1: जी
0: फिल्म का कोई मेरे माथे की बिंदिया,
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: ये
1: गीत है और एक निराला ही ढंग है इसमें ताल का, और वो प्रयोग धर्मिता की जो हम बात कर रहे थे
0: हाँ
1: वो यहाँ हमें दिखाई देती है। आइए सुनते हैं यही गीत।

पलकों की छांव में। इस फिल्म से लता जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर, ये श्रृंखला अब समाप्त होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार, आकाशवाणी के ही

0: आत्मीय श्री रविंद्र खासनीश जी। रविंद्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं।
1: जी धन्यवाद।
2: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: FM बैंड 101.9 MHz पर ये है FM रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आवारा फिल्म के इस गाने के साथ, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे अलबेला फिल्म से ये गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत सी रामचंद्र का।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवान।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप नौजवान फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले

0: ये आप सुन रही थी सजा फिल्म का गाना। संध्या मुखर्जी, हेमंत कुमार की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरे।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है खेल खेल में, इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गुलशन बाबरा के बोल, संगीत है राहुल देव।

सीता और गीता इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा गुड्डू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
8: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे लाखों में एक, इस फिल्म से ये गाना। आनंद बख्शी के बोल, संगीत राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म से। मुकेश और कंचन की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अपने रंग हजार इस फिल्म से, किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अनजान के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
4: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
4: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राज्य

0: राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की

0: योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना।

0: news.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। ये वक्त होता है आप तक लेकर आने का विविध जानकारियों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम।

जयपुर के साथ इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। ये वक्त होता है आप तक लेकर आने का विविध जानकारियों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर।

0: जिंदगी कोई रिकॉर्ड टेप की तरह कहाँ होती है जिसे हम रिवाइंड कर सके, ये तो एक सजीव कार्यक्रम जैसा है, यानी जिसे हम अपने तरीके से लाइव शो कहते हैं। इसलिए रेडियो की तरह ही अपने वाइब को पॉजिटिव ट्यून इन कीजिए और पूरे वॉल्यूम में अपने दिन को नए उजालों से भर दीजिए।
1: जी हां, इन्हीं खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनीता और मेरे साथ है
0: क्षिति प्रणाम।
1: तो कीजिए कबूल हमारा प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार के साथ ही क्षिति अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि आज ग्रीन एंड गेटअवे गुरुवार में क्या है खास।
0: सबसे पहले प्रातः ब्रीफ के अंतर्गत स्थानीय खबरों के साथ ही आज हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जयंती पर उन्हें याद करेंगे। साथ ही 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की करेंगे चर्चा। पर्यावरण संवाद में बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग और ऊर्जा संरक्षण की।
1: और उसके साथ ही यात्रा संवाद में हम पास के पर्यटन स्थल में बात करेंगे, बातों के जरिए अपने श्रोताओं को घुमाएंगे परशुराम महादेव और योगासन के साथ सतर्कता बढ़ते जागरूकता में इस विषय पर बात करेंगे।
0: तो करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज एक गीत के साथ।

0: चलिए ग्रीन गेट अवे गुरुवार में अब बात करते हैं प्रातः ब्रीफ की। बच्चे खेल खेल में सबसे बेहतर सीखते हैं और खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि जीवन की सीख है। ये बात सही है कि खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही होते हैं और इसी उद्देश्य के साथ हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 140 से अधिक देशों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया।
1: खेल बच्चों को संघर्ष, विस्थापन और आघात के बीच सुरक्षा और अमान्यता का एहसास दिलाता है जिससे उन्हें भय, चिंता और अनिश्चितता से निपटने में मदद मिलती है। ये बच्चों को सिखाती है खुद को अभिव्यक्त करना और ये मौका देती है शरीर को लचीलापन देने का, साथ ही भावनात्मक जो संतुलन है उसे भी बहाल करता है। बच्चे खेलों से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे समस्या का समाधान करना, भावनाओं का नियंत्रण करना और सहयोग की भावना को जगाना। खेल जो स्पर्धाएं होती है उसके माध्यम से भी बच्चे बहुत सारे कौशल सीखते हैं। मेगा खेल आयोजनों की मेज़बानी हमारे शहर में उदयपुर में भी की गई है। जैसे देखें, हमारे शहर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत जूडो के लिए मेज़बानी का गौरव प्राप्त हुआ है। दिव्यांग खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए उदयपुर में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप का सफल आयोजन भी किया जा चुका है और महाराणा प्रताप खेलगांव के एस्ट्रोटर्फ मैदान और विभिन्न मैदानों पर नेशनल स्कूल गेम्स हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई जिसमें देश भर के टीमों ने हिस्सा लिया।
0: और हर साल इस दिवस को एक थीम के साथ भी मनाया जाता है, तो 2026 की थीम है कि हर साल इस दिवस के जो 2026 की थीम है वो है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें।

0: दिवस सभी को याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेलों पर ही आधारित होता है और इसके साथ ही श्रोताओं तक पहुंचाते हैं स्थानीय खबरें। तो देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार देर रात पोर्टल बंद होने के साथ ही पूरी हो गई। इस साल तीर्थ यात्रा को लेकर बुजुर्गों में भारी उत्साह देखने को मिला है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके मुकाबले 3 गुना ज्यादा यात्रियों ने आवेदन किया है। सबसे ज्यादा रुझान हवाई यात्रा को लेकर दिखा है। योजना के तहत 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा से पशुपति नाथ मंदिर ले जाया जाएगा और इसके लिए 1,05,201 यात्रियों ने अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई है।
1: और आगे देखें तो हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती एवं हल्दीघाटी विजय सार्ध चतुर्शती उत्सव के तहत मेवाड़ वागड़ अंचल में महाराणा प्रताप के शौर्य गाथा घर घर पहुंचाई जा रही है। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के कार्यकर्ता गांव गांव और शहरों में पहुंचकर हल्दीघाटी विजय की गौरव गाथा के पत्रक वितरित कर रहे हैं तथा लोगों को 17 जून को आयोजित होने वाली विशाल राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रामीण शहर जो शहरी सेवा शिविर है वो महाअभियान के रूप में 12 जून से शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश भर में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर लगाए जाएंगे। महाअभियान में सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक ये कैंप होंगे।

0: हम नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के साथ हैं और आज इतिहास के उस पन्ने को पलटने का दिन है जिसमें माँ भारती के वीर सपूत महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उसको करारी टक्कर देने की गौरव गाथा को लिखा गया था। किसी ने क्या खूब लिखा है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। राम प्रसाद बिस्मिल, ये नाम हम सब जानते हैं, आज़ादी के दीवाने वो कहे गए। उनकी ख्वाहिश थी कि हंसते हंसते वे इस देश के लिए जान दें और अपनी पूरा जो जीवन है उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए।
1: वे बिल्कुल सही बात है, उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की थी और वे बचपन में थोड़े से शरारती थे जैसे सभी शरारती होते हैं बच्चे, उसी तरह से थे। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद उनके जीवन में एक बदलाव आया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। वे एक बेहतरीन कवि और लेखक भी थे। उर्दू और हिंदी में बिस्मिल राम और अज्ञात उपनामों से कविताएं उन्होंने लिखी है और उनका बिस्मिल उपनाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ जिसका अर्थ होता है घायल या बेचैन।
0: दोस्तों 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खिरनीबाग मोहल्ले में रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। उनके पिता पंडित मुरलीधर कचहरी में स्टैंप बेचने और नगर पालिका में काम करते थे। उनकी माता का नाम था मूलमती।
1: और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और महात्मा गांधी द्वारा 1922 में अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद देश के युवा निराश हो गए थे, लेकिन बिस्मिल का मानना था कि अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्हें सशस्त्र क्रांति जरूर करनी होगी। 1924 में उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शासन का गठन किया था और क्रांतिकारी गतिविधियां और हथियार खरीदने के लिए धन की सख्त जरूरत थी, जिससे ब्रिटिश सरकारी खजाने को उन्होंने लूटने की योजना भी बनाई थी।
0: जन्म के समय उंगलियों पर चक्र के निशान को देखकर भविष्यवाणी उनकी ये की गई थी कि ये बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। घर वालों ने प्यार से उनका नाम राम रखा था। बिस्मिल जी के पिता उन्हें उर्दू सिखाना चाहते थे, इसलिए शाहजहांपुर में उनका दाखिला करवाया गया। इसके बाद अंग्रेज़ी माध्यम से उनका जो शिक्षा थी वो चलती रही। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी इस बात का जिक्र किया है। राम प्रसाद बिस्मिल को किताबें पढ़ने का खूब शौक था। आर्य समाज मंदिर के एक मुंशी जी ने उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी।
2: और राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन, उनका बलिदान आज भी हमारे हर भारतीय को राष्ट्र प्रेम और

0: इश्क की सेवा के लिए प्रेरणा कर देता है।
1: रामप्रसाद बिस्मिल का जो पढ़ने का शौक़ था वो आगे भी चलता रहा। उन्होंने कई शायरियाँ लिखी हैं, उन्होंने कविताएं लिखी हैं और देश में नौजवानों को उठकर खड़े होने के लिए उन्होंने जोश भी इन्हीं कलम के शब्दों से दिया।

0: एक खूबसूरत आरामदायक घर का सपना हर किसी का होता है और उस घर को बनाने के लिए अपनी कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा वो मकान बनाने में लगा देता है। किंतु बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम ज़मीन खरीदते हैं या मकान बनाने के लिए, तभी से ध्यान देने वाली बातें होती हैं क्योंकि मकान बार बार नहीं बनते। तो आज इको टॉक में हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग्स और ऊर्जा संरक्षण की। तो सबसे पहले बात आती है कि ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे भवनों के निर्माण और डिज़ाइन जो अपने पूरे जीवन काल में पर्यावरण पर किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए, इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्राकृतिक रोशनी का प्रबंध हो जिससे हर समय बिजली पर निर्भर न रहना पड़े।
1: इन इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं जिससे अपनी खुद की बिजली उत्पादन का स्रोत वो बन जाता है और पावर ग्रिड पर निर्भरता भी कम हो जाती है।
0: और वर्षा का जल यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध हो, भवन निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, प्राकृतिक हवा यानी वेंटिलेशन और रोशनी की पूरी व्यवस्था हो। वेंटिलेशन सही नहीं होने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण की। इसमें ऊर्जा की ऐसी व्यवस्था जिसमें कम ऊर्जा में आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पुरानी तरह के बल्ब की जगह आप LED बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे रोशनी ज़्यादा और बिजली की खपत कम होती है। फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन खरीदते समय B रेटिंग 5 स्टार वाले उपकरण ही खरीदें। इससे बिजली की काफ़ी बचत भी होती है और चलते भी ये खूब हैं। वैसे ग्रीन बिल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊर्जा संरक्षण पर ही टिका होता है।
1: इसी को जोड़ते हुए अगर हम घर जो बनाते हैं उन्हें ग्रीन बिल्डिंग जिसे कहते हैं, उसे अगर हम कूल रूफ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से छतों पर एक रिफ्लेक्टिव पेंट का लेयर लगा देते हैं या टाइल्स लगा देते हैं, तो सूरज की जो गर्मी होती है वो छतों की सतह पर से रिफ्लेक्ट कर देती है और घर जो है वो अंदर से प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उन पर निर्भरता कम होती है।
0: जी, अगर हम उदयपुर शहर की बात करें तो उदयपुर भी अब आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग्स की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें शहर में ग्रीन इमारतों के नाम हैं यशत भवन। यह उदयपुर की पहली ऐसी इमारत

0: है जिसमें CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिलिंग द्वारा सर्वोच्च प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा प्रणाली, जल पुनर्चक्रण और ऊर्जा कुशल प्रकाश जैसी आधुनिक हरित तकनीकें शामिल है। और दूसरा उदयपुर का है रेलवे स्टेशन, जिसमें पुनर्विकास में पर्यावरण अनुकूल निर्माण को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इस ग्रीन बिल्डिंग परियोजना में विशाल सोलर पैनल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा शहर में तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक इमारतें जो आधुनिक टिकाऊ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, वो है थर्ड स्पेस। और इसके बाद है बलीचा में स्थित IIM, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान का नया कैंपस है। इसे पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण से साथ बनाया गया है और इसमें ऊर्जा की बचत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष निर्माण रणनीतियों को लागू किया गया है।
1: भारत में ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग सिस्टम भी है, जो ये प्रमाणित करता है कि कोई इमारत पर्यावरण के कितने अनुकूल है या नहीं है। ये रेटिंग सिस्टम कहलाता है एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग। एक प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग आम इमारतों के मुकाबले 30-50% तक बिजली की बचत करती है, 40% तक पानी की खपत को कम करती है और जहरीले गैसों के उत्सर्जन को भारी मात्रा में घटाने में ये मददगार साबित होती है। यानी कहा जा सकता है कि ग्रीन बिल्डिंग सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि हमारे भविष्य और मंथली बजट के लिए भी एक बेहतरीन निवेश है। इसलिए इसकी शुरुआत अपने घर के छोटे छोटे बदलाव से हमें ज़रूर करनी चाहिए।

नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा 9:10 से। फिलहाल वक्त हो चला है कि हम आपको जोड़े आकाशवाणी जयपुर के साथ, और यहाँ से आप सुनेंगे ठीक 9 हिंदी में प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर और FM रेडियो लेक सिटी।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: भारत सरकार की जो वाटरशेड स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम की योजना के तहत ये 5 किलोवाट का सोलर लिया जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई। और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% प्रतिशत आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव एमएनआईटी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया

0: जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंदरवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में ये सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय EMS और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
1: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल EMS, EMI तथा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर। आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में।

0: क्षिति देखो, अपना जो उदयपुर शहर है झीलों की नगरी, अपने झीलों के लिए तो प्रसिद्ध है, अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अपने धार्मिक स्थलों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो हमारे उदयपुर के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, परशुराम महादेव जी का मंदिर। ये पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थलों में से एक है। अरावली की खूबसूरत और दुर्गम पहाड़ियों के बीच ये गुफा में स्थित मंदिर है। इसको मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। यह मंदिर राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। मुख्य गुफा मंदिर राजसमंद जिले में आता है और नीचे जो स्थित कुंड धाम है वो पाली जिले के देसुरी तहसील में आता है। यह प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग से मात्र 10 किलोमीटर दूर है और रणकपुर से 7 किलोमीटर दूर है।
1: परशुराम का जो ये पौराणिक जो मान्यता के अनुसार हम मानते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने गुरु भगवान शिव की कठोर आराधना करने के लिए इस स्थान को चुना था। उन्होंने अपने दिव्य फरसे के प्रहार से इस पहाड़ी चट्टान को काटकर इस अनूठी गुफा का निर्माण किया था। पिता की आज्ञा से हुए मातृहत्या के दोष के निवारण और आत्मशांति के लिए परशुराम जी ने इसी गुफा में स्थित स्वयंभू शिवलिंग के सामने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान, धनुष, अक्षय तुणीर और कई अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। गुफा के भीतर एक शिला पर एक राक्षस की आकृति बनी हुई है। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने फरसे से उस दुष्ट राक्षस का वध किया, जिसके बाद वो पत्थर बक्का बन गया।
0: और इस प्राकृतिक गुफा के भीतर एक स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है और शिवलिंग के ठीक ऊपर चट्टान का स्वरूप गाय का थन जैसा बना हुआ है और इसमें शिवलिंग पर 24 घंटे प्राकृतिक रूप से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में गुफा लगभग 180 किलोमीटर लंबी थी, जिसका दूसरा छोर चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर नदी के पास खुलता था, जहाँ परशुराम जी ने स्नान किया था। समय के साथ प्रकृति ने इस रास्ते को बंद कर दिया और अब गुफा केवल 5 से 7 मीटर अंदर तक ही रह गई है। और पहाड़ी पर स्थित मुख्य गुफा मंदिर पहुंचने के लिए अगर बात करें तो 500 से 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और अगर मेवाड़ की ओर से यानी राजसमंद की ओर से अगर आप जा रहे हैं तो ये रास्ता लगभग 1200 मीटर है और इसकी दूरी तो कम है लेकिन इसकी चढ़ाई काफ़ी कठिन है। और पाली सादड़ी की तरफ से आप कर जा रहे हैं तो इसका रास्ता 1600 मीटर है, जिसमें चढ़ाई मेवाड़ वाले रास्ते की तुलना में थोड़ी सी कम और सुगम है।
1: पहाड़ी के नीचे 3 पवित्र कुंड बने हुए हैं जिनमें पूरे 12 महीने पानी भरा रहता है। तीर्थयात्री यहाँ स्नान या आचमन करने आते हैं। ऊपर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालु आते हैं लेकिन सावन और भादों के महीने में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर होता है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों में हरियाली छा जाती है और झरने बहने लगते हैं, जिससे यहाँ का माहौल स्वर्ग जैसा सुंदर दिखाई देता है।
0: और हर साल श्रावण के महीने में यहाँ पर एक मेला भी भरता है और इस दौरान लाखों की संख्या में शिव भक्त कोने कोने से आते हैं दर्शन करने के लिए। यदि आप भी शांति से दर्शन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो सर्दियों और गर्मियों का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है और वैसे आप मानसून के मौसम में भी यहाँ पर आ सकते हैं, प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं।

0: तो श्रुति, आपने एक कहावत सुनी होगी जरूर कि पहला सुख निरोगी काया।
1: जी,
0: हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन स्वस्थ हो, निरोगी काया रहे, और इसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है योग। योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्ट्रांग बनाता है, किंतु योग को सही तरीके से नहीं किया गया तो इसके फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो अवेयरनेस में आज हम बात करेंगे योगासन के साथ क्या सतर्कता बरतनी चाहिए।
1: जब हम बिना किसी गाइडेंस के या सावधानी नहीं बरतते हैं तो कई बार हमें योगासन भी मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द या लिगामेंट इंजरी का खतरा दे देते हैं। योग का नियम है स्थिर सुखम आसनम, यानी जिस स्थिति में आप स्थिरता और सुख का अनुभव करें वही आसन है।
0: और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो वो है कि गुरु के बिना आप बिल्कुल भी ये योग न करें, वीडियो देखकर या किसी किताब को पढ़कर आप बिल्कुल भी योग न करें।

0: क्योंकि आप जो योग करते हैं वो आपकी उम्र की और आपकी शरीर की क्षमता को देखकर करते हैं। तो योगासन खाली पेट ही करना चाहिए, अच्छे विचारों के साथ खुले स्थान पर जहाँ शुद्ध और ताज़ा हवा आती हो, जगह साफ सुथरी हो, वहाँ पर आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें और उसके बाद योगाभ्यास शुरू करें।
1: आपको ये भी देखना होगा कि आपकी शारीरिक सीमा क्या है, उसकी आपको पहचान करनी होगी। बीमारियों और चोट का अगर है आपके शरीर में तो उनका ध्यान रखें। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है तो उन्हें आगे झुकने वाले आसनों से बचना चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं या कलाई की चोट वाले लोगों को अधोमुख श्वानासन जैसी मुद्राएं बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं करनी चाहिए।
0: आरामदायक ढीले और सुविधाजनक कपड़े पहने और अच्छे ग्रिप वाले मैट पर ही योग करें, नहीं तो आप फिसल जाएंगे और कहें कोई भी मुद्रा करते समय आपको चोट लग सकती है। तो मैट आपका अच्छा होना चाहिए। जल्दबाजी में कोई योग ना करें, नहीं तो झटका भी लग सकता है। गर्दन या कमर में चणक कहते हैं जिसको, वो आ सकती है, चोट लग सकती है या कोई दूसरी तरह की परेशानी हो सकती है।
1: ये आपके शरीर और मन को जोड़ने का एक जरिया है। हमेशा किसी प्रमाणित योग शिक्षक की देखरेख में ही शुरुआत करें और अपने शरीर की आवाज़ आप खुद भी सुनें
0: और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। अगर घुटना नहीं मुड़ रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप घुटना मोड़ कर ही करें। अगर आप 50 साल के हैं या 50 साल से ऊपर के हैं और आप ये सोचें कि अगर 25 साल वाला लड़का या 25 साल वाली लड़की ये योग कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो इस तरह से किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन न करें और नहाते समय, नहाने के बाद एकदम से बिल्कुल भी योग न करें और योग करने के बाद एकदम से न तो नहाएं न खाना खाएं बिल्कुल, और कठिन योगाभ्यास बिल्कुल भी न करें अगर आपका शरीर नहीं चलता तो।
1: और जब योग करते हैं उस समय टीवी देखना, गाना सुनना या मोबाइल चलाना, इस प्रकार की गतिविधियों से भी बचें जिससे आपका पूरा ध्यान आपके योगासन में और आपके इस मेडिटेशन को पूरी तरीके से भाव मिले।
0: चलिए और अब सुनवाते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत और इस गीत के साथ ही श्रोताओं से ले लेते हैं इजाजत। तो आज इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ अनीता और मेरे साथ थे
1: श्रीवर्णा।
0: दीजिए इजाजत, नमस्कार।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

0: अहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। 10 बजे प्रोग्राम होगा वो भूली दास्तां, 11 बजे आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम होगा तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, और 12:05 से हम जुड़ जाएंगे विविध भारती मुंबई से। तो सुनते रहिए FM रेडियो लेक सिटी।

और अब बात करते हैं मौसम की, जो हर रोज़ अपने तेवर बदल रहा है। कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है, कभी तेज़ हवा चलती है, कभी बादल छा जाते हैं तो कभी बूंदाबांदी होने लगती है। कल धूप काफ़ी तेज़ रही और साथ ही गर्म हवाएं भी चल रही थी। मौसम विभाग के अनुसार माने तो कल से मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। बादल छाए रहेंगे, हवा चलेगी, हल्की बारिश भी हो सकती है। और बीते 24 घंटों के तापमान की बात करें तो 39.3 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस।

0: ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
2: तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: और अब एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि टकमण 28 कला संस्थान में इन दिनों समर कैंप और समर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बच्चे और युवा कलाकारों का उत्साह देखते ही बन रहा है। संस्था में पेंटिंग, ग्राफिक्स, आर्ट और सेरेमिक कला की विशेष प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय कैंप में विशेष रूप से सेरेमिक कला के प्रति बच्चों और युवाओं में गहरी रुचि देखने को रही है। प्रतिभागी मिट्टी से बनी कई तरह की उपयोगी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, जिसमें कप, प्लेट, शोपीस और दूसरी घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को वो दर्शा रहे हैं।

गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम बस यहीं तक FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह FM रेडियो लेक सिटी और मैं हूं आपके साथ अनीता। अब प्रोग्राम पुरानी फिल्मों की वो बातें जो सिर्फ यादों में हैं, प्रोग्राम वो भूली दास्तां।

यादों के झरोखों से। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कैबरे डांस की। कैबरे की बात करें तो पुरानी फिल्मों से इसका गहरा नाता रहा है। कैबरे की जड़ें पश्चिमी देशों के नाइट क्लब डांस और पेरिस के मैलिन रूस संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। भारतीय फिल्मों में इसे हॉलीवुड और विदेशी शैलियों के रूप में पेश किया गया।

Hi, handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा,

0: अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: इस नृत्य शैली को हिंदी सिनेमा में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय मुख्य रूप से हेलेन को जाता है। उनके अलावा शशिकला, बिंदु, अरुणा ईरानी जैसी अभिनेत्रियों ने भी कई फिल्मों में शानदार कैबरे डांस किए हैं।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: www.radio.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कैबरे की बात अगर करें तो हिंदी फिल्मों में हेलेन से भी पहले एंग्लो इंडियन मूल की कुकू 40 और 50 के दशक में अपने डांस के लिए खूब मशहूर हुई थी। चाहे वह राजकुमार की फिल्म आवारा हो, बरसात हो या महबूब खान की फिल्म आन हो।

मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, मैं चंचल मधमस्त पवन हूँ, घूम घूम हर कली को चूम, घूम घूम हर कली।

0: पतली कमर है तेरी नजर है, पतली कमर है तेरी नजर है।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों के झरोखों से और एफएम रेडियो लेक सिटी पर, और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कैबरे डांस की। कुकू ने ही हेलेन को फिल्मों में काम दिलवाया था। जब वे 12-13 साल की थीं तब वे कुकू के पीछे कोरस डांस किया करती थीं। कुकू की शागिर्दों में हेलेन सबसे मशहूर कैबरे डांसर बनकर उभरी।

और अब बात करते हैं बिंदु की 1971 में आई फिल्म कटी पतंग का वो कैबरे डांस। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बू कहते हैं। ये गीत आज भी सभी की जुबां पर है।

शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो। राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

कैबरे डांस की बात हो और जय श्री टी तलपड़े की बात न हो तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसे हम जय श्री टी के नाम से जानते हैं, इनका कैबरे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था जो फिल्म शर्मिली में था।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वो भूली दास्तां, और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की कैबरेट डांस की, और अब बात करते हैं अरुणा ईरानी की, जिन्होंने सभी तरह से दर्शकों के दिल पर राज किया।

चलिए अरुणा ईरानी के बाद अब बात करते हैं पद्मा खन्ना की। इन्होंने भी कई फिल्मों में कैबरे डांस किए थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मशहूर हुई मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत के साथ, हुस्न के लाखों रंग।

चलिए बात करते हैं आवाज़ की, तो हेलन कैबरे की, जहां सर्वश्रेष्ठ एम्बेसडर थीं जबकि आशा भोंसले ने सबसे अच्छे कैबरे गीत गाए और आर डी बर्मन, एस डी बर्मन और ओ पी नैयर ने कैबरे गीतों को अच्छा संगीत दिया।

वो भूली दास्तां प्रोग्राम बस यहीं तक। आपने ट्यून किया है एफएम रेडियो लेक सिटी और मैं हूं आपके साथ अनीता। अब हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं वो प्रोग्राम जिसका आप कर रहे हैं इंतजार। तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, इसमें गीत हम वो लेकर आए हैं जो आपको भी पसंद आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें मैसेज करना होगा 9462697568 पर। और अब बताते हैं फिल्मों के नाम जिनके गीत आज आप सुनने वाले हैं। तो फिल्मों के नाम हैं दोस्ती, रूप तेरा मस्ताना, हीर रांझा, चेतना, नाइट इन लंदन, जिद्दी, चौदहवीं का चांद और मर्यादा। चलिए आगाज करते हैं दोस्ती फिल्म के इस गीत के साथ।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और फिल्म का नाम दोस्ती। ये खूबसूरत सा गीत सुनने के लिए बहुत सारे मैसेज हम तक पहुँचे हैं जिन्होंने पसंद किया इस गीत को। सबसे पहला जो संदेश हम तक पहुँचा है वो है उदयपुर वारियों की घाटी से, सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी और नाहर सिंह वारी। और उसके बाद हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टू, रोजी डिकेस्टू, पॉल डिकेस्टू, विलिस डिकेस्टू। और अगला संदेश है अवधेश शर्मा, अशोक शर्मा, रोहित सनम, ब्रजेश शर्मा, हीरालाल शर्मा, मुकेश दिलमणि शर्मा और श्री कृष्ण शर्मा। ये हैं ज़िला बक्सर बिहार के हमारे श्रोता हैं। और उसके बाद हैं ये प्रिया, चीनू, प्रिंस, कुमावत, श्यामा, गुड्डी मौसी, गज्जू भाई, कुमावत आचार्य मार्ग, चांदपोल बाहर, उदयपुर से हैं। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है वो है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। ये हैं मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता। उसके बाद हम तक मैसेज पहुंचा है जिला मुरादाबाद दुल्हापुर से है। ये है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। और उसके बाद हम तक पहुंचा है संदेश और वो है सिद्धार्थनगर, दरियापुर भावली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शेरी बर्नेर, अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, चंद्रपुर महाराष्ट्र से मधुकर येले, कंचन येले, नीलेश येले, बुद्ध विहार बाबली से मंगेश पानबुढ़े, भानुदास पानबुढ़े और टेकरीवाड़ी धानपुर से हैं सुशील येले और मनीषा येले। धन्यवाद के साथ इनका संदेश हम तक पहुँचा है। और अगला संदेश हम तक पहुँचा है हिरणमगरी सेक्टर 4 से, सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित, नमिता, कार्तिक, शानू और संजू यादव, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, रजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद कुर्मा, जांजगीर, चंपा छत्तीसगढ़ से हैं, दिलराज मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मिरी। उसके बाद लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता लोखंडे, ये हैं यवतमाल महाराष्ट्र से। उसके बाद का संदेश हम तक पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित्त का। और उसके बाद है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा।

किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, नमस्ते के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्येंद्र चौहान, तरुणा चौहान, एडवोकेट कमलेश चौहान, मधुकांता चौहान, नव्याश्री, नित्याश्री और हम सभी को ये दोस्ती फिल्म का गीत काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद हैं सोनू यादव और पिंकी यादव, भिलू राणा कॉलोनी के श्रोता हैं और इसी गीत को पसंद किया है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमांश। सादुल शहर ज़िला श्रीगंगानगर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ जी ने भी गीत बहुत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस ननवाकर, निर्मला विशाल ननवाकर और मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े और राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरकर जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, महाराण प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी, धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और कृष्विक सिंह और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह भी हैं इनके साथ। उसके बाद बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया झज्जर हरियाणा से हैं। सवीना सेक्टर 9 उदयपुर से हरीश जिंगर, मंजू जिंगर, जय जिंगर और माधवी जिंगर, छुटकी और कीटू इन्हें भी दोस्ती फिल्म का गीत बहुत अच्छा लगा है। लेवाई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मणिकपुरी, राजा दास और रानी मणिकपुरी, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ये हैं। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्य वर्मा, रोशन लाल सालवी, राजकुमारी सालवी, ललित सालवी, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिव, विश्वांश हैथविक और पूरा सालवी परिवार, चौकीदार आवास, मीरा गर्ल्स कॉलेज। और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और गीत भी अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद है हजारेश्वर कॉलोनी से अमृत सेन और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, इन्हें भी ये दोस्ती फिल्म का गीत अच्छा लगा है। खम्मा घड़ी के साथ अगला संदेश हम तक पहुंचा है तुलसीराम जी चौहान सूरजपोल से, गजेंद्र सिंह सारंग देवोत, भव्य राज सिंह सारंग देवोत और भुरकिया खुर्द बाहड़ा से हैं भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान बाहड़ा चौहानों की हवेली से गोपाल चौहान, ठोकर चौराहा उदयपुर से मनोज वागड़ी, एडवोकेट महेश वागड़ी आदर्श पहाड़ा से हैं, विकास हैं और कुशाल वागड़ी हैं मन वागड़ी सेक्टर 14 से हैं, ललित सिंह चौहान कांकरवा आयड़ से हैं, उमेश दाहिमा, हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयड़ कला वाटी से हैं, इंदरलाल जी राजावत सज्जन रोड और इनके साथ हैं दीपेश चौहान हाथीपोल से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ के ये हमारे श्रोता हैं। और सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमार सदर्व और कुमारी प्रणाली, कुमारी मानसी, कुमारी कल्पना देशमुख ये हैं, ये जाफराबाद के हमारे श्रोता हैं। और उसके बाद है कस्बा बराड़ा ज़िला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजित कुमार कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरबख्श सिंह राहुल। उसके बाद हैं दोस्ती फिल्म के लिए अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है वो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरा डागला परिवार रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन के श्रोता हैं। इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता और भी हैं, वो हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी पिंगावाला चौक गौरैया जालंधर से, संबलपुर कांकेर से हैं फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इसी के साथ हैं सोनू और राजकुमारी उदयपुर कृष्णपुरा से आयुष गरिमा, राहुल पायल, कृष्णा इंदिरा, मयंक भव्य राज, भंवरी बाई और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। और साथ में है भंवर लाल जी नायक। उसके बाद हैं गांव फरा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी हैं। और उसके बाद हैं ये हैं छोटी बलिया मुंबई कर्जत से हैं अहमद बाई फूलवाले, दुखना सदफ, इमरान अहमद फूलवाले, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं आमना नसरीन बागवान, आसमा परी रबिया और आशु अहमद फूलवाले। धन्यवाद के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और वारियों की घाटी से भावना रावत, नितिन रावत और जगदीश चौक से उमेश्वरी सालवी
साक्षी रावत।

और उसके बाद हैं दोस्ती फिल्म के गीत को पसंद किया है हमारे श्रोता ने, वो हैं खांजी पीर उदयपुर से, जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, निदा इरम, कलीम प्रताप नगर से, नरेश दवे, रंजना दवे, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। और उसके बाद हैं प्रेस कॉलोनी खांजी पीर से रियासत अली, जाहिदा बेगम, इमरान अली, निगार परवीन, इरफान अली और जाकिरा बानू। उसके बाद हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता गोस्वामी, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। अभी और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अब सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम का अगला गीत, फिल्म का नाम रूप तेरा मस्ताना।

उड़ा और उसके बाद हैं फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु लाड़ी, विशाल शालिनी और टिवांशी, कोई भी गीत सुना दीजिए, ऐसा कुछ मैसेज इन्होंने लिखा है। ये पंजाब से हैं, आपका नाम हमने ले लिया। और उसके बाद हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन और मयंक शर्मा। उसके बाद हैं बाबूलाल जी, दिनेश टांक, मुकेश टांक, पुष्कर टांक, सूरज पोल रेगर कॉलोनी से दिनेश जिंगर, मोहित जिंगर, इंदु जिंगर, ये हैं भूत महल के श्रोता। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विनी, मंगला बहन और राजेंद्र जी शाह, नेपानगर मध्य प्रदेश के ये श्रोता हैं। नाइस सॉन्ग। और ये लिखने वाले हीरा लाल चौधरी, गजेंद्र चौधरी, निर्मला चौधरी, पूर्वी चौधरी, प्रेक्षा चौधरी, ये हैं मठ मादरी के श्रोता। और उसके बाद चेतक सर्कल से हैं मुकेश जिंगर, रेणु जिंगर, प्रेमपुरी गोस्वामी, सहेलियों की बाड़ी से अजय जिंगर, प्रिंस जिंगर, कुलदीप, सज्जन कॉम्प्लेक्स, आज़ाद नगर के श्रोता हैं। और उसके बाद है मजनू का टीला से कमल बालूचा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, गौतम प्रकाश गांधी, मंजू गांधी, रितवांश गांधी, केशव नगर उदयपुर के, साथ में सुरेश जी मेघवाल, सभी इस गीत को सुन रहे हैं। और ये हैं विश्वविद्यालय मार्ग श्रीनाथ कॉलेज से हैं, कालका माता रोड से हैं धन्य कुमार चित्तौड़ा, नवनीत कुमार चित्तौड़ा, मनीष कुमार चित्तौड़ा। और उसके बाद हैं डॉक्टर इकबाल शका साहेब प्रोफेसर जी हैं। और ये हैं शैलेंद्र पालीवाल, कालू जी मिस्त्री, हितेश जी मेघवाल और आसपास के सभी श्रोता इस गीत को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हैं ये हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, शारदा चित्तौड़ा, रॉबिन चित्तौड़ा, विकास, भावेश, सोनाली और विनीता, कृतिका चित्तौड़ा, दिया, प्रियांश चित्तौड़ा और तनिष्क चित्तौड़ा भी हैं इनके साथ। और नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनस अब्बासी, यशफ अब्बासी, यह हैं सिकंदरा राहुल से, मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, धन्यवाद के साथ इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है। और उसके बाद हैं तुलसीराम, गीता, डॉक्टर मनीषा, भुवेश, पूरा खत्री परिवार, कल्लड़वास, सांची ग्रुप भी इनके साथ हैं। और उसके बाद हैं गुरमीत सिंह, मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, नारवा, इंद्रोक, जोधपुर राजस्थान से, नरपत सोनी, वैशाली सोनी, गणेश चौक, रातानाड़ा, जोधपुर राजस्थान से नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचा है वो है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनोरी तेलीवाड़ा के श्रोता हैं। और उसके बाद विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे, ये बीड शहर महाराष्ट्र से हैं। और उनके साथ हैं हिल स्टेशन खंडवा से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे, आयुर्वेद चौरा से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान और पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत और नक्श रावत हैं। मुकेश वैद सिसारमा उदयपुर से, मनन वैद, ईशानी वैद, शीला वैद, थैंक यू के साथ पूरा चौहान परिवार है। अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है वो है ये है त्रिलोक पूर्बिया, उषा पूर्बिया, हिरल पूर्बिया और हेमांश पलक, मांगीलाल जी, भगवती देवी, हाथीपोल उदयपुर के श्रोता हैं। कृष्णपुरा से लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य और भंवर लाल जी नायक भी हैं इनके साथ। और उसके बाद हैं गुड मॉर्निंग मैडम के साथ संदेश हम तक पहुंचा है। और ये हैं मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप शर्मा, चिंतामणि की घाटी से, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, पूरा वर्मा परिवार, ये हैं छत्तीसगढ़ के श्रोता। और उसके बाद हैं देवशंकर तामुड़िया, अजय तामुड़िया, तुषार देव तामुड़िया, डॉली बेबी पूजा तामुड़िया, राधिका प्रभा देवी तामुड़िया, मास्टर अल कबीर जी हैं और छत्तीसगढ़ के ये हमारे श्रोता हैं। सिद्धार्थनगर टेकरी जिला धारावीशी महाराष्ट्र से हैं सुमंत, बुद्ध भूषण, वल्लभ शिल्पकार, विमल आरोही, लाल सिंह और पूरा मस्के परिवार इनके साथ हैं। इन्होंने इस गीत को बहुत पसंद किया है। चलिए अगला संदेश है वो है जावरनगर उदयपुर से हैं बाबू भाई, भारती देवी, कलश मार्ग से लाला सोनी, अशोक तोलमनी और मोहन कसारा इनके साथ हैं। सलाम अलैकुम के साथ सरदारपुरा उदयपुर से हैं अकीला, हीना, अरशद अली, पिंकी, असरार, अहमद, भाविका और पूरा सलोड़ा परिवार सरदारपुरा उदयपुर के श्रोता हैं। और अगला संदेश देखते हैं किसका है, वो हैं
भागवत वर्मा।

अभी आप सुन रही थी मोहम्मद रफ़ी को रूप तेरा मस्ताना फिल्म में, और उसके पहले आपने सुना था दोस्ती फिल्म का गीत। तो दोनों के ही कुछ मिले जुले नाम इस तरह से हैं, ग्राम पीपल लोड सरगना, छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरुण।

शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा, दतरंगी के ये श्रोता हैं और घंटाघर से हरीश सोनी, मांगीलाल जी, दीपक कुमावत, नरेश जी पाहुजा, पवन सोनी, नाहर सिंह, लाल जी और इन्हें भी ये गीत बहुत अच्छा लगा है। मीरा नगर से मनोहर सितलीगर, सरोज सितलीगर, गणेश घाटी से और ये हैं हेमेंद्र विजेंद्र सिकलीगर। अगला संदेश हम तक पहुंचा है चंद्रशेखर भावसार, संगीता भावसार, कपिल भावसार, दामिनी भावसार, लविशा भावसार और तीन मोहाली चोटा उदयपुर के। ओम प्रकाश भावसार, मधु भावसार, नीरज भावसार, प्राची भावसार, दीपाशी भावसार, सुरभि भावसार और नन्ना सा, ये भी तीन मोहाली चोटा के ये श्रोता हैं। और उसके बाद हैं देवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिय कुमावत, रजत कुमावत और नन्ना टप्पू। गज्जू भाई कुमावत, आचार्य मार्ग, चांदपुल बाहर के श्रोता हैं। और उसके बाद विनोद सालवी, अनिता सालवी, पीयूष सालवी और लक्षिता सालवी, सुथारवाड़ा उदयपुर के श्रोता हैं। चलिए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म हीर रांझा से। यदि आपने भी अपना नाम अभी तक नहीं भेजा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9462697568 पर।

हीर रांझा इस फिल्म के गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं हफीज़ा मिठाई, नफीसा फकरू, यूसुफ असगर, सकीना पटवा, जकिया गौरैया, बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर से हैं। और शुक्रिया भी इन्होंने लिखा और इन्हें ये गीत अच्छा भी लगा है। चलिए अगला संदेश हम तक पहुँचा है शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतुड़िया, काम्या खतुड़िया, विकास खतुड़िया, भानु खतुड़िया और हितांश खतुड़िया। सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से हैं खतुड़िया, निकिता खतुड़िया और कशिश हसीजा, दीपक हसीजा, मीर हसीजा और इनके साथ हैं क्यू। अगला संदेश हमसे हमारे पास पहुंचा है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट रतलाम एमपी से हैं। यह जगदीश धाकड़, नाइमा मंजू बाई धाकड़ और युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ जी ने भी ये गीत अच्छा लगा है। और खम्मा घणी अनीता मैडम जी लिखा है और उसके बाद हैं ये जो पसंद करने वाले श्रोता हैं उदयपुर रामदेव जी मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, ललित जी, किरण, अजय जी, भावना, विनायक जी, हेमलता, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है और सारे गाने हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। हीर रांझा पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद का संदेश हम तक पहुंचा है ये हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नौकेलाल वर्मा, छत्तीसगढ़ के श्रोता। और उसके बाद हैं ये हैं विमल टेलर, महेंद्र टेलर, सुनीता टेलर, मयूर टेलर और हिमांशी टेलर, चौहान फैमिली, मालदास स्ट्रीट उदयपुर के श्रोता। और राहुल भावसार, दामिनी भावसार, हर्षल भावसार, कुसुम भावसार, अक्ष सोनी और निशा सोनी हैं और इनके साथ पूरा परिवार है। करजाली हाउस से हरीश सोनी, पवन सोनी, चंद्र प्रकाश सोनी, त्रिलोक सुंदर, लाल जी पूर्विया, इन्हें भी ये गाना बहुत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं कमल सुहाल का, श्रीमती कौशल या सुहाल का, आनंद विहार सेक्टर नंबर 4 के ये श्रोता हैं। और उसके बाद हैं हीर रांझा के लिए ही अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गौरैया, जालंधर के श्रोता हैं। और कुतुबपुरा उदयपुर से अशरफ खान, रईसा खातून, मंजू निम्मी, असीफिट रोड से नजीब खान, सबिया खानम, शीबा और शैला, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। ये रूप तेरा मस्ताना फिल्म का गीत इन्होंने पसंद किया है और इसी गीत को पसंद किया तीज का चौक से राजकुमार खंडेलवाल, शैलेंद्र खंडेलवाल, इंद्रलाल खंडेलवाल और दीपक सही वालों की हवेली से, जगत सिंह चौहान, सविता चौहान, मोना और धीरज। हीर रांझा फिल्म के गीत को पसंद किया है सैफी कॉलोनी खांजी पीर से डॉक्टर एदा अनाबिया, रेहाना बानू, मुफ्ता मिफ्ता हुसैन, फरीदा जब्बार, सुल्तान और डॉक्टर नाहिद। और इन्हें भी सारे गीत अच्छे लगे हैं। हीर रांझा के लिए ही अगला संदेश है मल्लतलाई से फैयाज हुसैन रसिया, फरीदा बानू, मोहम्मद सैफ और रुबीना। और इन्होंने भी लिखा है कि गाने इन्हें सभी अच्छे लगे हैं। लक्ष्मी मार्ग अमल का कांटा से राहुल शर्मा, योगेश शर्मा, योगी शर्मा और विक्रम शर्मा, विनोद कालू, हसन बा, सुनीता, अनीता, जया, अरविंद उदयपुर रामपुरा से हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और पूरा अब्बासी परिवार ये हैं चौखुंडी बुलंदशहर के श्रोता। और ये हैं महेश्वरी मोहल्ला मालवी से गणपत विजयवर्गीय, भगवती पुष्पा बैन, फैना गर्ग और पूरा विजयवर्गीय परिवार। और उसके बाद हैं ये हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान,

तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। उसके बाद एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा, लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी कोमल, कैरातीवाड़ा, रंगीला भैरू चौक से हैं विनोद जी कुमावत, निलय कुमावत, गजेंद्र जी।

सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। उसके बाद एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा, लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी कोमल, खैरातीवाड़ा, रंगीला भैरव चौक से हैं विनोद जी कुमावत, निलय कुमावत, गजेंद्र जी कुमावत, जया कुमावत, कुशल जी, कोमल कुमावत, हिरण मगरी सेक्टर 5 से, शिवलाल जी कुमावत, छगन देवी कुमावत, राजकुमारी मोहित, चार भुजा मंदिर खैरातीवाड़ा के श्रोता हैं। नमस्ते के साथ अगला संदेश हम तक पहुँचा है हीर रांझा फिल्म के लिए ही। ये हैं बगेरा दुर्ग से संतोष रामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, जिन्हें भी गीत अच्छा लगा है। चलिए तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो हमारे गीतों को पसंद कर रहे हैं। चलिए एक संदेश और है, कमल सोनिया, हरीश मोनिका, भाविक मीनाक्षी, आयुष मंथन, प्रिशा हर्षल, रोनित जैन और तुलसी नगर भुआणा की श्रोता। प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म चेतना से, आवाज़ मुकेश की।

प्रांजल राय हैं, उसके बाद है अशोक प्रताप नगर उदयपुर के श्रोता हैं, और हैं उसके बाद ये हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, और ये हैं सुरेंद्र सोलंकी, जिन्हें ये गाना बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू के साथ इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। और अगला संदेश है मोहम्मद सलीम शाह, रज़िया बानू, इनाया टेलर, इक्सा इकरा मुस्तफ़ा, ये हैं सलूम्बर के श्रोता। उसके बाद है नीरज ध्रुवेश प्रेम शंकर दिव्यांश खारोल कॉलोनी फतेहपुरा से, हसीन परवीन इशरत जीनत और नफिया माल, ये हैं मल्ला तलाई के श्रोता। उसके बाद नागर नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई, सैफिन भाई हैं, और सलमान अत्तारी, होजेफ अत्तारी, सुगर अत्तारी, संजीदा, तबस्सुम, अलीशा, कलकत्ता वाला फोर कॉलो, ये हैं खारोल कॉलोनी के श्रोता। और कुड़ी जोधपुर से हैं रवीना खतूड़िया, स्वर्णा, ये हैं चंदवानी और भरत चंदवानी, क्यू चंदवानी, और उसके बाद हैं संतोष खतूड़िया, यज्ञेश खतूड़िया, सालवी हैं, और ये दूध तलाई उदयपुर के श्रोता हैं। शुक्रिया मेहरबानी के साथ टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है अंबेरी से हेमा, वीनू और उनके मम्मी पापा, प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है मैडम जी, थैंक यू के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और अगला संदेश है टेकरी लिंक रोड से हैं मिस्टर एंड मिसेस के और उनकी प्यारी सी बिटिया। उदयपुर काष्ठकला मार्ग से अमृत लाल जी, रेणु और रविशंकर, हनुमान जी मंदिर से हैं अशोक जी, सीता देवी, सूरज, ताशु, हेनू, और लाल मगरी सेक्टर 7 से शांता देवी, मनोज, सुनील और पूरा परिवार हमारे गीतों को पसंद कर रहा है। और उसके बाद हैं लाल मगरी सेक्टर 7 से शांता देवी, मनोज, सुनील कुमावत, और सारे ही गीत इनको अच्छे लग रहे हैं। जितना फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं सुथारवाड़ा से नरोत्तम गौड़, यश गौड़ और बोहरा गणेश जी से हैं चंद्र प्रकाश अग्रवाल, चंदा अग्रवाल और भरत और हर्ष अग्रवाल, जिन्हें ये गीत बहुत अच्छा लगा है। चलिए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म नाइट इन लंदन से।

मुकेश का गाया फिल्म चेतना का गीत किस किस श्रोता ने पसंद किया है, चलिए उनके नाम बताते हैं। कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी सानी और मोहम्मद अफजल मलिक हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय और श्रीमती उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय। दुविधा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और

0: नाइट इन लंदन। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं धान मंडी से परमानंद कुमावत, मंजू कुमावत, विकास मोनिका और लक्ष्य कुमावत। लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य भी इनके साथ हैं। और बैंगलोर से निकलेश, दीपिका और धान कुमावत। और बैंगलोर से ही हैं वर्षा, सुरेंद्र और लावण्या कुमावत। उसके बाद हैं प्रभात नगर हिरणमगरी सेक्टर 5 से रामचंद्र टेलर, लीला देवी, कल्पेश, पिंकी, मनस्वी, चैतन्य और कार्तिकेय, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हैं। बोहरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बीर टेलर और ताहिर लड्डू सिराज हबीब। और चमनपुरा से जहिरा अहद और फातिमा आसिफ पटवा, जिन्हें गीत अच्छा लगा। और उसके बाद हैं विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत व्यास, पूनम व्यास, आशीर्वाद नगर, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर के श्रोता। चेतना फिल्म के लिए जो संदेश हम तक पहुंचा है वो है धान मंडी से कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोजबाला हरिव्यासी, मेघा गीत हरिव्यासी, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। और लिखा है अनिता जी, आज क्या शानदार गीतों का आपने चयन किया और बधाई भी इन्होंने दी है। तो सभी श्रोताओं का शुक्रिया। और हम जो भी गीत पसंद करके लाते हैं उनमें आपकी पसंद भी शामिल होती है। हमें पता है कि आपको कौन कौन से किस तरह के गीत पसंद होते हैं। तो शुक्रिया आपका। और रामपुरा से नारायण सेन, और इन्होंने भी गुड मॉर्निंग के साथ संदेश भेजा है। और अगला संदेश है हम तक पहुंचा गुड मॉर्निंग के साथ रामचंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पंवार, पिंकी, मनस्वी, चैतन्य और कार्तिकेय, प्रभात नगर हिरणमगरी सेक्टर 5 के श्रोता। कुम्हारवाड़ा से ललित कुमावत, प्रजापत, अशोक कुमार, नामदेव, जाकिर हुसैन। और यूनिवर्सिटी केशव नगर से दीपिका कहार, चंदा कहार, पुरुषोत्तम कहार, मोहित कहार, कुणाल कहार और मुकुल कहार, और साथ में इनका पूरा परिवार है। बस्ती राम जी की पाड़ी से हैं सराज हुसैन और शिरीन और समत मोतीवाला फैमिली, जिन्हें भी ये गीत अच्छा लगा है। तो तमाम श्रोताओं का शुक्रिया। चलिए अगला गीत फिल्म जिद्दी से, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख, तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: फिल्म का नाम है जिद्दी और आवाज लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में जिद्दी फिल्म का गीत था, और इस गीत को पसंद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं, और वो हैं हिरण मगरी उदयपुर से, सेक्टर 5 के श्रोता, शांतिनगर से घनश्याम लाल बडारिया, नानी बडारिया, नंदनी, पल्लवी, कुसुम और बाबू भैया हैं, और उसके बाद हैं बड़ी जेटी फार्म हाउस से विनोद, उमा, अमित, नम्रता और प्रथम, वमिका और अनारिया, जिन्हें यह गीत अच्छा लगा है, और उसके बाद है प्रिंस प्रिया चिनोजी चांदपोल के श्रोता, बंटी, तरुणा, दीपिका, रेखा, चांदनी पवार, भतीजी कार्तिकेय और मनस्वी चैतन्या, मम्मी पापा साथ में हैं, और ये हैं ज़िला बांसड़ा उदयपुर के श्रोता। उसके बाद है गोविंद जी, राजकुमार, कैलाश, नवीन लाल जी, ये श्रीनाथ मार्ग खैरातीवाड़ा उदयपुर के श्रोता, शशांक कुमावत, कार्तिक, मोहित, पल्लू, यूवी कुमावत, हिरण मगरी सेक्टर 5 से,

किंजू कुमावत तो शौर्य कार्तिक दादाजी दादी जी हिरण मगरी पांच उदय पार्क के श्रोता हैं और उसके बाद हैं उदयपुर वारियों की घाटी से हरीश रावत मीना रावत एसन रावत और भोपाल वाड़ी से रवि भाई सत्तू भाई और दिलीप खत्री जी ने गीत अच्छा लगा और उसके बाद है शुभ प्रभात के साथ हैं ये तरुणा झमक पूर्बिया सोहन देवी पूर्बिया और लक्षी लक्षराज पूर्बिया हाथीपोल उदयपुर धन्यवाद के साथ और लिख रही हैं कि हमें सारे गीत अच्छे लग रहे हैं और गुड मॉर्निंग करजाली हाउस से हैं ये हैं महादेव लाल जी सिकलीगर हरीश सोनी सुंदर लाल जी पूर्बिया और बेस्ट सॉन्ग इन्होंने लिखा है और अगला जो संदेश है वो बड़ी सादड़ी से है टीम JRDP से है जगदीश लाल जी पुष्पा टेलर श्रीराम जी श्रीराम चंद्र लीला देवी पंवार दिलीप कुमार जमुना चौहान प्रकाश चंद्र और विद्या कनेरिया इनके साथ हैं भोपालपुरा मेन रोड से हैं प्रेम लता खेतरा और सूरज खेतरा अनुराग और चंदू कपिल योगेश और एडवोकेट दीपक खेतरा जी ने भी गीत अच्छा लगा है। चलिए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म 14वीं का चांद से ये टाइटल सॉन्ग है।

चौदहवीं का चांद इस गीत को सुन पसंद किया है हमारे श्रोताओं ने, और वो हैं नान जी, भरत जायसवाल लाल जी, दिलीप जी, लक्ष्मी मार्ग अमल का कांटा से, तुलसीराम कुमावत, कांता कुमावत, तौसिक, रवि महादेव मंदिर खैराती वाड़ा से, किंजल कुमावत, हर्षित कुमावत, शौर्य गजेंद्र हिरण मगरी सेक्टर 5 के श्रोता कुवैत से हैं, ताहिर अली, अमानतुल्ला और हसन को ये गीत अच्छे लग रहे हैं। चलिए प्रोग्राम का आखिरी गीत फिल्म मर्यादा से

मर्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं और गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाटा, उमंग नाटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वचिता, भंवर वचिता, गौतम वचिता, राहुल अगरबत्ती, रामद्वारा चौक, धौली बावड़ी के ये श्रोता हैं। और उसके बाद हैं बोरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बीर टेलर, ताहिर लड्डू, सिराज हबीब, और उसके बाद हैं बापू बाजार से चेतना रावत और साक्षी रावत, वारियों की घाटी से गुनगुन, और ये लिख रहे हैं करीता जी आज गाने बहुत अच्छे बजाए, आपका तहे दिल से शुक्रिया एस एन रावत। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे गीतों को आप पसंद करते हैं। और उसके बाद एक और संदेश हम तक पहुंचा है, दिलीप सेन, दिनेश नंदावत और राजकुमार जैन, परमानंद कुमावत, सुखलाल साहू, मणिलाल मोची, प्रहलाद अग्रवाल, तेल बाजार उदयपुर के श्रोता हैं। तो तमाम श्रोताओं का शुक्रिया। चलिए एक और संदेश हम तक पहुंच गया है चलते चलते, ये है रामचंद्र पवार, तुलसीराम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश महेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया और सारे मित्रगण इनके साथ हैं। तो तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने हमें मैसेज किया और हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त अनीता को, नमस्कार।

101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह एफएम रेडियो लेक सिटी सवेरे के दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदराबास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: मदन मोहन का सर्वद किया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया राजा और रंग फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना है।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को शुरू में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों, उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा

भाजपा सा प्यार भी नजर आ रहा है और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल मेरा ही हमसाया। कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ। याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं। एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं। एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए और मन गांव में बस गया। शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं। शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं। सुनो चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चलें जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, आज का टेक्स्ट। और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है, तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं।

श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारें नज़र आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आज़ादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ छपाकछई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक, इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें ज़रूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज़ गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप ज़रूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ ख़ास गीत एक

अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद की चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है, और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज़ या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गाँव में जो यादें हैं, रहट का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन

रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना, जो जीना तमान पर फिल्माया गया। और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताज़ा मिलेगी, ताज़ी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाज़ें अब भी दुनिया में नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रख कर कह रही हूँ अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफ़ी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पगडंडी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से। और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थीं। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी, अब वो पक्की सड़क बन गई है।

पायल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। डाकिये की साइकिल की घंटी मुख हो गई है। डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है। गांव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कंक्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं, कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती हैं कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं। इस इबारत में गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सोंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस्तक, यादें, भोर, पनगट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव। जी हाँ, और गीत भी बताएं।

नैया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें। श्रोताओ, गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है, आपके गांव की रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। श्रोताओ, क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफ़र किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा, गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है, बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं, तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफ़र का इंतज़ार है, तो जी हाँ, ये सफ़र जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये ज़रूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताज़ा हो गईं और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियाँ, वो आंगन में सब कुछ समेटना और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो

आंगन में सब कुछ समेटना और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गाँव और गाँव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़न, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भय पनघट पे ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है?

सुन रहे थे फिल्म ठोकर से साजन, दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का, गांव की जिंदगी क्या होती है, वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मज़ा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गाँव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज, हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफ़र है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए, आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन, हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने रुला दिया वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ, उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे, जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं। Ha ha ha ha!

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें

जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज़ की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो।

ये गीत आप सुन रहे थे, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सभी इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांद दूध जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता है।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

खेल हमारे नज़रिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने

0: ना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी

0: के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब

0: ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अधिकतम

0: तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षपत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून।

0: कूना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर गेम ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: तो इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब अगर कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहाँ की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है, और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है, कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उसी तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं, और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है,
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ की लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गाँव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बेता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी ज़रूरी ज्ञान है कौशल है वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है,
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए।

0: ना आज भी संरक्षित है और
1: हुँ.
0: उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्यौहार हैं, जो भी परंपरा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयां करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलु गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलु गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी
0: और एक गीत सुन लें अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खासतौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो
1: हाँ
0: देखने में बड़ा मजा आता
1: बिल्कुल, अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज़ और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल रही
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों

0: क्योंकि स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने के लिए खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल, और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज़्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं ना, तो वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल, वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके के
0: ज़रूरी
1: खेल
0: है।
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास
1: स्वस्थ रहता है। पुराने खेल को छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास

0: हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी खेलते
1: थे
0: और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की एक गेंद बना ली, उससे मार कर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना।
5: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना ज़रूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं

0: कि खेल हर चीज़ में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं, और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
0: बिल्कुल सही बात है। और इस साल जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं, और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं
0: जी,
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित करते हैं खेल, और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे, माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: है। और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं, जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत।
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया, तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी,

0: कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
1: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है? बस
0: बिल्कुल,
1: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम
0: एक्टिव होता है तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, जब
0: बहुत
1: बच्चों को
0: जरूरी है।
1: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
0: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता है कभी कभी।
1: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलो एक गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश है या नहीं कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो, इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देख कर, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देख के बारे में समझ नहीं साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे कपड़े, मतलब तुम्हारे उसके कपड़े, हमारे कपड़े सफेद।

0: कैसे हो सकते हैं, तो वही चीजें वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
1: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
0: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही हूँ, वो सिर्फ दूसरों की नज़र से खुद को देखने लगता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती, आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं तो वहां हमें बहुत सारे लाइक मिले।
0: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
1: वो लाइक कितने बढ़ गए,
0: वो उसी में लगे रहते हैं।
1: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं, क्यों हम सबूत दिखाएं।
0: आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
1: वो लाइक कितने बढ़ गए,
0: वो उसी में लगे रहते हैं।
1: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं, क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें यह समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
0: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं, जो खुशी होती है ना वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते। तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं,
0: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और

0: होंगे, इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं, लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप
1: बिल्कुल। और
0: बता
1: ये
0: रही
1: जीवन
0: हैं
1: है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि
0: जी,
1: हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना, हमें अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर रात को हम तखिया भी होते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था, लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये
1: बिल्कुल
0: इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लेकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सब के साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है,
1: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
1: एक
0: ये
1: प्यारा सा
0: प्यारा
1: गीत।
0: सा गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना। और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना।
1: जी बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें। क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत ज़रूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है हम खुश हैं इसमें, वो चीज़ होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज़्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहाँ पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फ़ोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन दिखने की वहाँ पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो, और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल।

0: सही बात है,
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है। लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है, ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश हैं।
1: तो एक और जमाइश होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है। फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में. एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है. दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है. इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारे

0: मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। और इसी के साथ एक और हमारी श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है।
1: बहुत ज़रूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज़ या माचिस की तीली, जैसे अक्सर
0: हाँ,
1: हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक
0: और
1: चीज़ होती
0: महिलाएं
1: है।
0: हेयर पिन घुमाती हैं
1: हाँ, हेयर पिन, चाबी ले लेता है कोई, कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज़ संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना
0: जी
1: जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुँचाएगा।
0: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीज़ें,
1: बल्कि हम
0: हेयर
1: कहेंगे
0: पिन,
1: कि आप
0: इनका तो कभी
1: बिल्कुल
0: ना
1: आप
0: करें।
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुँचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए,
0: जी
1: और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे
0: जी
1: एक आवाज़ सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुँचाएगा ही।
0: क्योंकि जब इस चीज़ का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से, मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फ़ोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज़ आवाज़ में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज़ या अन्य कोई आपको आवाज़ भी दे रहा है, तो आपका ज़रूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो
1: बिल्कुल
0: ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम
1: बिल्कुल।
0: करना
1: और
0: है।
1: सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए। और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना एक कान में लगा लिए, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास चाहिए कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चारो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज़ से उसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी ज़रूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज़ ना डालें, पानी को झुकाकर

अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे। बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज के लोग। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी, इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर तब्बा नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी साथ हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: पापा
1: हम्म,
0: लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी,
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं, हमारे ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है,
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ के नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने विकेट, कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं, है ना? तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा, कैसे खेलते थे? अच्छा लगता था? गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम, क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा, छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था। पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने।
0: क्या
1: फिर आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेन में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गए आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गए आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सपनों

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और ईद भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुन के मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी,
0: क्यों?
1: लड़की थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। विविध भारती
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या
1: बात,
0: हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई विचार तो करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश,
0: और
1: अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: बिल्कुल नहीं का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनना है मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: पास करी तो।
1: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
0: जी मैम, हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
1: हाँ,
0: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए ऐसे चलता है।
1: अच्छा, समय रहते घर पहुंच जाते हो।
0: जी मैम जी,
1: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं।
0: जी मैम, हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा ऐसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है।
1: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो।
0: जी मैम, विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
1: कैसा महसूस कर रहे हो।
0: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
1: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो।
0: जी मैम, आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप।
0: जी मैम, हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसुंतर बोलो मैम।
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ मैम।
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम,
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर

0: कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमचारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर आसाम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो सांड नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था आपका?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: Yeah!

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288। हमारा दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

आप सुन रहे थे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम 101.9 MHz पर। यह है FM रेडियो लेक्सिटी। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: लिसनर्स, गुड इवनिंग। लिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम युवाओं की आवाज, और मैं हूं आपकी होस्ट माहिन खान। और आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट
1: नेहल राठौर।
0: लेकर आए हैं जोश, जुनून और नई सोच की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: दोस्तों कहते हैं किसी देश की असली पहचान उसकी संस्कृति होती है। जहाँ मिट्टी की खुशबू में बसती हो पहचान, जहाँ संस्कारों से बनता है हर इंसान, ऐसे ही भारत की बात करेंगे 2047 की।
1: 2047 यानी आज़ादी के 100 साल। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे या अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलेंगे?
0: बिल्कुल सही कहा माहिन, कल्चरल रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ परंपराओं को बचाना नहीं बल्कि उन्हें समय के साथ इन्वॉल्व करना है।
1: जैसे हमारी भाषाएं, आज के टाइम में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2047 तक हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी।
0: हाँ, इमेजिन करो स्कूल्स में बच्चे हिंदी, संस्कृत या अपनी मातृभाषा में कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करें, तो हम सभी के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा।
1: और बात करें फेस्टिवल्स की, आजकल हम फेस्टिवल्स को सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित कर देते हैं।
0: सही कहा, कल्चरल रिफॉर्म्स में ये ज़रूरी है कि हम त्योहारों के असली मीनिंग को समझें, यूनिटी, हैप्पीनेस और टुगेदरनेस को।
1: एक और ज़रूरी पॉइंट, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स जैसे डांस, म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट्स,

0: ये हमारी पहचान है।
1: एब्सोल्युटली माहिन, 2047 तक हमें इन आर्टिस्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना होगा ताकि दुनिया मेड इन इंडियन कल्चर को भी सेलिब्रेट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेस्पेक्ट। हमारी संस्कृति सिखाती है एल्डर्स का सम्मान, नेचर की केयर और हार्मोनी में रहना।
0: बिल्कुल सही नेहल, अगर ये वैल्यूज हम अपनी डेली लाइफ में लाएं तो इंडिया सिर्फ डेवलप्ड नेशन नहीं बल्कि वैल्यू बेस्ड नेशन बनेगा।
1: तो दोस्तों, इंडिया 2047 का सपना सिर्फ साकार नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: क्योंकि जब कल्चरल स्ट्रांग होगा तभी एक नेशन ट्रूली स्ट्रांग बनेगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: अब हम बात करेंगे उस भारत की जो सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि विकसित आत्मनिर्भर होगा, यानी इंडिया 2047। लेकिन नेहल, क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस सपने की जड़ें कहाँ हैं? नेहल, ये सपना आज का नहीं, ये सपना उन वीरों का है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दिलाई। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका जन्म आज ही के दिन 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। बचपन से ही बिस्मिल जी बहुत तेज, साहसी और देशभक्त की भावना से भरे हुए थे।
1: सही कहा, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी और उर्दू में प्राप्त की। वे पढ़ाई के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए भी सोचते रहते थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और वे भारतीयों को अत्याचार करते थे। इन अत्याचारों को देखकर बिस्मिल जी के मन में क्रांति की भावना जागी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया।
0: और मैं बताना चाहूँगी कि बिस्मिल साहब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कार्य किए। उनमें सबसे प्रसिद्ध घटना काकोरी ट्रेन रॉबरी है, जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और इस घटना में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों की ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था ताकि उस धन का उपयोग आज़ादी की लड़ाई में किया जा सके।
1: इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने बिस्मिल जी के उनके साथियों को पकड़ लिया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई।
0: और राम प्रसाद बिस्मिल केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक महान कवि भी थे। उन्होंने कई देशभक्ति कविताएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना आज भी लोगों के जोश भर देती है।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए त्याग और बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा।

0: दोस्तों, जहां एक तरफ हम 2047 के सांस्कृतिक भारत की हम बात कर रहे थे, वहीं अब बात करते हैं उन युवाओं की जो आज से उस भविष्य को बना रहे हैं, यंग टेक्नोक्रेट्स जैसे विनोद पाटिल और साथी सावला।
1: विनीत पाटिल, जिसने अपने छोटे से आइडिया को बड़ा ब्रांड बना दिया। विनीत पाटिल और पाटिल काकी की इंस्पायरिंग जर्नी।
0: दोस्तों, पाटिल काकी नाम सुनते ही घर के बने खाने के स्वाद की याद आ जाती है ना?
1: बिल्कुल यही। यह एक मुंबई बेस्ड होम स्टाइल स्नैक ब्रांड है जिसे विनीत पाटिल ने अपनी माँ गीता पाटिल के साथ मिलकर शुरू किया।
0: और खास बात यह है कि यहाँ आपको मिलते हैं ट्रेडिशनल और हाइजेनिक महाराष्ट्रियन स्नैक्स जैसे चकली, चिवड़ा, पूरणपोली और मोदक, यानी प्योर घर का टेस्ट। लेकिन कहानी यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
1: जी हाँ, विनीत ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी माँ के छोटे से होम बेस्ड बिजनेस को सपोर्ट कर सके।
0: और फिर आया ईयर 2020 का लॉकडाउन, जहाँ कई बिजनेस रुक गए, वही विनीत ने इसे अपॉर्चुनिटी बना दिया
1: और उन्होंने बिजनेस को डिजिटल बना दिया, वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन ऑर्डर शुरू किए और देखते देखते ही ये होममेड स्नैक्स हजारों लोगों तक पहुंच गए।
0: बिल्कुल सही कहा माइन, यही होती है यंग टेक्नोक्रेट की सही सोच, प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना।
1: नेहल, और फिर उनकी मेहनत उन्हें लेकर गई एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2, जहां उन्होंने इन्वेस्टर्स पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल से 40 लाख की फंडिंग हासिल की सिर्फ 4% इक्विटी के बदले।
0: सोचिए जरा, कुछ लाख के छोटे से रेवेन्यू से शुरू हुआ ये सफर आज करोड़ों में टर्नओवर तक पहुँच चुका है।
1: और पाटिल काकी आज पूरे भारत में घर के स्वाद को पहुंचाने का सपना पूरा कर रहे हैं।
0: माहिन, इनकी कहानी हमें सिखाती कि सक्सेस के लिए बड़े रिसोर्सेज नहीं बल्कि बड़ी सोच जरूरी है, और जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन साथ आ जाए तो कमाल होना तय है।
1: तो दोस्तों, ये थे विनीत पाटिल, जिन्होंने अपनी माँ के छोटे से बिजनेस को एक बड़ी अटेंशन खींच लिया,
0: वहां से मिली फंडिंग

0: अटेंशन खींच लिया।
1: वहां से मिली फंडिंग और गाइडेंस ने इनके बिजनेस को एक नई पहचान दी और आज पाटिल काकी जो है पाटिल काकी इकोम वेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत तेजी से ग्रो कर रहा है।
0: दर्शन सावला की खास बात यह है कि उन्होंने ट्रेडिशनल होममेड फूड को मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटजी और ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट किया, यानी कल्चर टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू सक्सेस। यही है आज के यंग टेक्नोक्रेट्स की असली कहानी।
1: तो दोस्तों, विनीत पाटिल और दर्शन सावला की ये जो जर्नी है हमें सिखाती है कि टीम वर्क, इनोवेशन और फैमिली सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल है।
0: और अगर आइडिया स्ट्रांग हो तो छोटे से घर से शुरू हुआ बिजनेस भी पूरे देश में अपनी पहचान बना सकता है।

0: आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: वो दिन जब ना कोई टेंशन थी ना कोई भाग दौड़, बस खेल मस्ती और दोस्तों के साथ बिताए सुनहरे पल थे। खेल सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है जो हम बनाता है। और इसी के साथ आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। हर साल 11 जून को मनाया जाता है। यह दिन बच्चों और सभी लोगों के जीवन में खेल के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी,
1: ताकि दुनिया भर में यह संदेश फैलाया जा सके कि खेल केवल मनोरंजन

0: मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने, विकास और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: खेल बच्चों के फिजिकल, मेंटल, सोशल विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनका शरीर मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है और वे दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। आज के समय में कई बच्चे मोबाइल और टीवी में ज़्यादा समय बिताते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले का उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को बाहर जाकर खेलने के लिए प्रेरित किया जाए। यह दिन माता पिता, शिक्षकों और समाज को याद दिलाता है कि बच्चों को खेलने का पूरा समय और अवसर देना चाहिए।
1: और इस दिन स्कूल संस्था और समुदाय में विभिन्न स्पोर्ट्स एक्टिविटी आयोजित की जाती है, जैसे दौड़, फुटबॉल, कबड्डी और अन्य खेल। और ऐसी ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों में खुशी और उत्साह बढ़ाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। ये दिन हमें सिखाता है कि खेल जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों खेल से शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है।

0: विज्ञान धारा योजना को सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी सरकारी पहल मानी जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में आने वाली बाधाओं को दूर करना है और लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर देना है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से गरीब, कमजोर और जरूरतमंद वर्गों पर ध्यान दिया जाता है ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियाद सुविधाओं से वंचित न रहें।
1: इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि लोग आर्थिक और सामाजिक कारणों से पीछे रह जाते हैं, उनके रास्तों में रुकावटें कम किया जाए। जैसे कई बार छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसे की कमी होती है, किसानों को साधनों की कमी होती है या छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने के लिए

0: मदद नहीं मिलती। ऐसी स्थितियों में यह योजना सहायता प्रदान करती है।
1: और इस योजना के द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे फाइनेंशियल हेल्प, ट्रेनिंग, जागरूकता प्रोग्राम, और इससे लोगों को ना केवल तुरंत मदद मिलती है बल्कि वे इंडिपेंडेंट बनते हैं। उदाहरण के तौर पर बेरोजगार युवाओं का कौशल देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जाता है, और ज़रूरतमंद परिवार को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन की स्थिति सुधारी जाती है।
0: इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है माहीन कि यह समाज में समानता यानी इक्वलिटी को बढ़ावा देती है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र से हो। इससे सामाजिक असमानता कम होती है और देश का समग्र विकास संभव हो पाता है। तो माहीन, अब बात करते हैं इसके तीन मुख्य कंपोनेंट्स की।
1: और पहला विज्ञान और संस्था और मानव क्षमता निर्माण, यानी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंटेड लोगों को मजबूत करना।
0: और दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे बेसिक रिसर्च से लेकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तक को बढ़ावा दिया जाता है।
1: और तीसरा इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, यानी रिसर्च को प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में बदलना।
0: जी हाँ दोस्तों, इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य है देश के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना,
1: और स्टेम फील्ड्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाना और वुमेन साइंटिस्ट को एम्पावर करना भी इसका अहम हिस्सा है।
0: इसके अलावा स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स और को साइंटिफिक करियर की ओर अट्रैक्ट

0: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शानदार एक्टर की जिनकी एक्टिंग ने हर किरदार को यादगार बना दिया, पीटर डिंकलेज। इनका जन्म 11 जून 1969 को न्यू जर्सी यूएसए में हुआ था और आज वो हॉलीवुड के सबसे रेस्पेक्टेड एक्टर्स में गिने जाते हैं और उनकी जर्नी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी स्कूल प्ले द वेलवेटन रैबिट से,
1: और बाद में उन्होंने बेनिंगटन कॉलेज से एक्टिंग की पढ़ाई की और कई स्टेज परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पहली फिल्म भी लिविंग इन द ऑब्लिविन 1995, लेकिन

0: एस्पेक्टेड एक्ट्रेस में गिने जाते हैं और उनकी जर्नी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी स्कूल प्ले द वेलवेटन रैबिट से,
1: और बाद में उन्होंने बेनिंगटन कॉलेज से एक्टिंग की पढ़ाई की और कई स्टेज परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पहली फिल्म भी लिविंग इन द ऑब्लिविन 1995, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली द स्टेशन एजेंट 2003 में जो रिलीज़ हुई थी उससे मिली। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया जैसे एल्फ, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, प्रिंस कैस्पियन और एक्स मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, और उनकी एक्टिंग का जादू देखने को मिला और अवार्ड विनिंग फिल्म्स 3 बिलीबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिजरी में भी हुआ।
0: लेकिन अगर उनके सबसे आइकॉनिक रोल की बात करें माहिन, तो वो है ट्रायन लैनिस्टर।
1: HBO की फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में उनके इस किरदार ने उन्हें वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ी पहचान दिलाई।
0: इस रोल के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले जैसे एमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, और इनकी खास बात ये भी थी कि ये टेलीविज़न के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में भी शामिल थे।
1: और हमें सिखाते हैं कि टैलेंट और डेडिकेशन के दम पर कोई भी अपनी पहचान बना सकता है, और आज उनके बर्थडे पर हम उन्हें यही कहेंगे, कीप इंस्पायरिंग द वर्ल्ड।
0: तो दोस्तों, अभी हमने बात करी पीटर डिंकलेज की इंस्पायरिंग जर्नी की, और आज का दिन खास इसीलिए भी है क्योंकि ऐसे ही एक और वर्सेटाइल एक्टर का भी आज जन्मदिन है, जिनकी पहचान सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि म्यूजिक और कॉमेडी में भी है।
1: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ह्यू लॉरी की, जिन्होंने अपने टैलेंट से हर फील्ड में कमाल किया। यानी उनका आज ही के दिन यानी 11 जून 1959 को इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ, और वे एक शानदार एक्टर, कॉमेडियन और म्यूजिशियन हैं।
0: और इनकी शुरुआत हुई कॉमेडी से, जब उन्होंने साइफन फ्राई के साथ मिलकर फ्राई एंड लॉरी की फेमस कॉमेडी डुओ बनाई।
1: इन दोनों ने कई पॉपुलर शोज के साथ काम किया जैसे बिट ऑफ फ्राई लॉरी और जीव्स एंड वोस्टर।
0: इसके अलावा उन्होंने ब्लैक क्लेडर जैसी क्लासिक कॉमेडी सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का शानदार जलवा दिखाया।
1: लेकिन ह्यू लॉरी को ग्लोबल फेम मिला उनकी आइकॉनिक रोल डॉक्टर ग्रिगोरी हाउस से, और फॉक्स की मेडिकल ड्रामा सीरीज हाउस में उन्हें इस किरदार के लिए उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई।
0: इस रोल के लिए उन्होंने कई अवार्ड जीते जिनमें से थे ग्लोबल ग्लोब अवार्ड, और इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगत की वो समय टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में ये भी शामिल थे।
1: और हाउस के बाद भी उन्होंने अपने टैलेंट का जादू जारी रखा जैसे द नाइट मैनेजर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस, और HBO की वीप में भी उनके रोल को काफ़ी सराहना मिली।
0: लेकिन ह्यूज लॉरेन सिर्फ एक एक्टर ही नहीं माइन बल्कि वो एक अमेजिंग म्यूजिशियन भी थे, जिन्होंने ब्लूज एल्बम्स जैसे लेट देम टॉक एंड डिडंट इट रेन रिलीज किए, जिन्हें काफ़ी पसंद किया गया।
1: तो दोस्तों, ह्यू लॉरी एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने एक्टिंग, कॉमेडी और म्यूजिक हर फील्ड में अपनी अलग पहचान बनाई, और यही वर्सेटैलिटी उन्हें खास बनाती है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन की जिन्होंने अपने हिम्मत और मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि सपनों के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हम बात कर रहे हैं पैरा बैडमिंटन की विश्व चैंपियन मानसी जोशी की। भारत की एक प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से देश का नाम रोशन किया। मानसी जोशी का जन्म आज ही के दिन 11 जून 1989 को मुंबई में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छी थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक कंपनी में भी काम किया
4: और साल 2011 में एक रोड एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। यह उनके लिए बहुत कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने फिर से चलना सीखा और अपने जीवन में नई दिशा दी।
3: और इसके बाद उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और धीरे धीरे इसमें माहिर हो गई। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्ट लिया, उनमें उन्होंने कई मेडल्स और पदक जीते। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2019 में आई जब उन्होंने BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में स्वर्ण पदक जीता।
4: मानसी जोशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार भी मिले। वे न केवल एक खिलाड़ी है बल्कि एक प्रेरणा भी है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।
3: मानसी जोशी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार माननी नहीं चाहिए

0: और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
1: दोस्तों, बात करते हैं भारत के महान तैराक और लंबी दूरी की तैराकी के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी मिहिर सेन की। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया।
0: मिहिर सेन का जन्म 16 नवंबर 1930 को पुरुलिया में हुआ था। वे बचपन से ही मेहनती और लगनशील थे। उन्होंने कानून लॉ की पढ़ाई की और वकील बने, लेकिन उनका असली जुनून तैराकी था।
1: उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1958 में आई, जब उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने। यह काम बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस समुद्र में ठंडा पानी, तेज लहरें और लंबी दूरी जैसी चुनौतियां भी होती हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इसके बाद मीर सेन ने कई और बड़े कारनामे किए। उन्होंने दुनिया के 5 प्रमुख समुद्र यानी 5 ओशंस को पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनकी इन सफलता के कारण उन्हें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर भी कहा गया। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े अवार्ड से सम्मान किया। और मीर सेन का निधन 11 जून 1990 को हुआ, लेकिन उनकी उपलब्धियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अंत में मीर सेन का जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत, साहस और

0: आत्मविश्वास से इंसान किसी भी मुकाबले को पार कर सकता है।
1: अब बात करते हैं आज के स्पोर्ट्स अपडेट की। आज से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है। यह टूर्नामेंट यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। भारत में इसके लिए खास एक्सपर्ट पैनल तैयार किया गया है, जिसमें भाईचंग भूटिया और अदिति चौहान जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
0: गोल्फ में कैनेडियन ओपन 2026 चल रहे हैं, जिसमें बड़े खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। टेनिस, साइकिलिंग, बास्केटबॉल जैसे और एथलेटिक्स में कई इंटरनेशनल मुकाबले भी जारी हैं।
1: और हमारी नेक्स्ट अपडेट है, आज अलग अलग लीग्स और सीरीज में लगभग 16 क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं ओडीआई और टी20 में। इसमें बांग्लादेश वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ओडीआई जैसे बड़े मैच भी आज हो रहे हैं।

हर दिन कुछ अच्छा या बुरा घटता है और यही घटनाएं आगे चलकर इतिहास बन जाती है। कई सफलता की कहानियां दर्ज है तो कई संघर्ष और बलिदान की मिसालें। तो हम बात करते हैं 11 जून का दिन भारतीय और

0: विश्व इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है।
1: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के अनुसार सन 1964 में उनकी अस्थियों की भस्म को उनकी मृत्यु के बाद आज ही के दिन पूरे देश में बिखेरा गया था।
0: और सन 1866 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। और 2008 में ब्रह्मोस सुपर सैनिक मिसाइल को आज ही के दिन आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। और हम बात करते हैं 1935 में एडविन आर्मस्ट्रांग द्वारा पहली बार सार्वजनिक रूप में FM रेडियो का प्रसारण अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया। और हम बात करेंगे 1903 की, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज के पेटेंट का आवेदन किया था, हालांकि ये आवेदन खारिज हो गया था। एक साल बाद दोनों ने अमेरिका को ओहियो पेटेंट अटॉर्नी से आवेदन करवाया गया। और 1981 में भारत ने अपना पहला संयार उपग्रह INSAT-1A लॉन्च किया।
1: अब बात करते हैं आज के शेयर मार्केट की। पहले बात करते हैं उसमें निफ्टी 50 की, ये पहुंचा है 23,161.60 पर, जिसमें 53.35 अंकों से गिरा। सेकंड 20 SE सेंसेक्स, जो रहा 73,832.55 के स्तर पर, और इसमें भी 150.63 अंकों से गिरा। और अगर हम बात करें करेंसी की, तो 1 US डॉलर जो रहा हमारा 95.73।

0: दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं थी आपकी रेडियो दोस्त नेहल और मेरे साथ
1: माहिम खान।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना दैनिक और रोचक कार्यक्रम, मनोरंजन के से भरपूर कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, इसका प्रसारण हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर के साथ साथ एफएम रेडियो लेक सिटी पर भी किया जा रहा था। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज MT

0: सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उप प्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एक 101.9 गीगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम रेडियो लेक्सिटी के साथ। लीजिए प्रस्तुत है राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम झुमको। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं रागिनी और राकेश काला की आवाजों में ये गीत।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा।
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: FM रेडियो लेक सिटी से आप सुन रहे हैं राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम झुमको। ये गीत मंजू शर्मा की आवाज में है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सुप्रिया और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था। अगला गीत अब सुनते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
4: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
7: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
8: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम झुमको अब होता है यहीं समाप्त। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक्सिटी। शाम के 7 बजे हैं अब विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूं विधि जैन, हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूं। फौजी भाइयों को विशेष प्रणाम करती हूं और यह सुंदर सा गीत भारतीय सेना के नाम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: भारतीय सेना के लिए इस प्यारे से वंदन गीत के साथ में आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम जयमाला की। पहला गीत हम ले रहे हैं मुकेश की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोलों के साथ, शंकर जयकिशन का संगीत है, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से।

हम सुन रहे थे ये गीत तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में अगला गीत, जो कि है साथी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल और नौशाद का है संगीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला का अगला गीत, जो कि है फिल्म आया सावन झूमके से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी की हैं बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

हम सुन रहे थे प्यासा सावन फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में एक और सुंदर सा गीत जो कि है सौदागर फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन का ही है संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत वापस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
1: हम सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी के संगीत के साथ। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम जयमाला। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता।
0: आज सुनिए दूसरा भाग।
1: कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता।
0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब।
2: शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए राजेश हमाल जी एक नेपाल के आज के सुपरस्टार हैं वहाँ के।
0: अच्छा,
2: उनके विषय में भी एक दो शब्द आपको बता देता हूँ। क्षतीश जी करके एक थे, वो डायरेक्टर ही थे वहाँ के, काफी फेमस डायरेक्टर थे नेपाल के, सतीश कुमार सर
0: जी
2: अंधेरी में रहते थे। सतीश जी ने मुझे कॉल करके बुलाया, नेपाली फिल्म का नाम था गोपी किशन, तो उन्होंने बोला कि आपको पूरी फिल्म करनी है।
0: जी जी,
2: मैंने सर वो पूरी फिल्म की, राजेश हमाल जी की फर्स्ट फिल्म थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर वो फिल्म जो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हुई थी नेपाल में,
0: ओके,
2: और पहली फिल्म थी राजेश हमाल जी की, आज वहां के सुपरस्टार हैं। तो ऐसा मैंने सर बहुत सी फिल्में की और सीखता गया, अभी भी सीख ही रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, उम्र भी होती जा रही है, सीखने में तो जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन में आदमी कभी पूरा हो नहीं सकता है।
0: जी जी,
2: तो मैं स्वतंत्र रूप से फिर मैंने सबसे पहले तो यूनियन ज्वाइन की, मेंबर बना मैं, के बाद में सर फिर मैंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन के क्षेत्र में मैंने संघर्ष शुरू किया। तो एक प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था अजय शाह, और उनके एक साथी थे हितेश शाह, अजय शाह हितेश शाह, ये दोनों महावीर सीरियल बना रहे थे।
0: जी जी,
2: भगवान महावीर, और उस दौर के अंदर काफी मतलब सीरियलों का दौर था, तो बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी। तो किसी ने इनको सजेस्ट किया कि यार वो लड़का जो है ना इकबाल अली, उसको लो आप, पता नहीं किसी ने तारीफ कर दी कि

0: जी जी
1: तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये सीरियल बनानी है, मैथोलॉजिकल सीरियल है, भगवान महावीर के ऊपर है, और मुझे पहले इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे इनके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए।
0: जी जी
1: तो सर मैं तुरंत आपको हाँ नहीं बोल सकता हूँ। तो सर देखिए उनकी मानता, उन्होंने मुझे फुल हेल्प की, और मैंने 2 साल तक, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं जैन हो गया, और 2 साल तक मैं मतलब बड़े बड़े गुरुओं से मिलता गया। हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो जैन थे दोनों, तो वो मुझे ले जाते थे, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, महावीर पुराण पढ़ी। 2 साल तक मैंने सर बहुत मेहनत की, और ये 2 सालों में मैंने कोई काम नहीं किया, और मैं थोड़ा फाइनेंशियली परेशान तो होता था क्योंकि थोड़ा गरीब आदमी हूँ मैं भी, लेकिन एक शौक था मुझे, जुनून था मेरे अंदर कि नहीं मुझे अगर करना है तो करना है, और ईमानदारी से करना है, और आगे एक कामयाब निर्देशक बनना है, ये एक मेरे अंदर वो था
0: जी।
1: तो सर मैंने भगवान महावीर सीरियल जो है, फिर हमने उमरगांव के अंदर वृंदावन स्टूडियो है जहाँ पर रामायण वगैरह की शूटिंग हुई थी, तो पटेल साहब का है, अभी तो उनका ध्यान तो हो गया, बहुत नेक इंसान थे। उमरगांव में हम गए, उमरगांव में हमने सेट वगैरह लगाया। सर पहले क्या था कि आप जानते होंगे कि पायलट एपिसोड बनते थे दूरदर्शन के लिए, कि भाई आप 4 पायलट बनाइए, वो पहले दीजिए, हाँ अप्रूवल होंगे, उसके बाद में फिर आपको वो मिलेगा, टाइम वगैरह जो भी है, स्पॉन्सर वगैरह जो भी है। तो मैंने वो 4 एपिसोड मेहनत करके उस 4 एपिसोड को मैंने कंप्लीट किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि वो 4 एपिसोड को बनाने के अंदर मुझे कम से कम 3-4 साल लग गए।
0: अरे बाप रे,
1: 3-4 साल इसलिए लगे कि मैं 3 साल तक तो अध्ययन ही करता रहा जैन धर्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में जानने की
0: जी।
1: और उसके बाद में फिर साल भर तो मुझे मतलब उसको पिक्चराइजेशन करने में लग गया, क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा था और उस टाइम बड़ा टफ मामला था सर, दूरदर्शन के ऊपर बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी उस टाइप की, और न्यूज़पेपर के अंदर काफी चर्चे, मुझे काम भी तो फिर उस हिसाब से करना था, और मेरा तो मतलब सब कुछ था इसके ऊपर ही दारोमदार था। तो मैंने सर वो बहुत खूबसूरती से मैंने वो 4 एपिसोड बनाए, लेकिन वहां भी नसीब ने साथ नहीं दिया, कुछ प्रोड्यूसर को आपस में कुछ उनका था मामला, कुछ जमा नहीं, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया।
0: ओहो,
1: बहुत बड़ा धक्का लगा, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और मैंने मेरा पूरा समय मेरा इसमें गया, खैर होता है जिंदगी के अंदर। फिर संघर्ष में लग गया सर, संघर्ष करता रहा, फिर अब मुझे अब तो जागो फिल्म मेरी वो मैंने कंप्लीट की, मतलब ये सोच लीजिए कि मैंने कम से कम 20-25 फिल्में मेरी शुरू हुई होगी, कुछ मुहूर्त हुआ, कुछ 2-4-5 रील बनी, कुछ 10-15 दिन की शूटिंग हुई, कुछ ये हुई, लेकिन मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमेशा प्रोड्यूसर की तरफ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते थे, और पिछड़े बंद हो जाती थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम बोलिए, कहीं प्रोड्यूसर का देहांत हो गया, कहीं कुछ हो गया, बड़े मसले हुए मेरे साथ में
0: जी जी।
1: हाँ, बहुत संघर्ष मेरी लाइफ में रहा सर। तो उसके बाद में अब तो जागो मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने ईश्वर से अल्लाह से ये प्रार्थना किया सबसे पहले कि मालिक अब ऐसा कुछ मत होने देना, इस फिल्म को तो कंप्लीट करवा दे। तो सर वो मेरी फिल्म कंप्लीट हुई, मैंने राजस्थान में शूट किया
0: जी।
1: उसके अंदर तो सर ऐसा हुआ कि जो दो हमारे जो प्रोड्यूसर थे, एक अनिल चेलानी साहब और एक विजय शर्मा साहब, बहुत नेक इंसान है वो दोनों, जो कलाकार थे, थिएटर के आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि इकबाल जी हम इसमें एक्टिंग करेंगे। तो हमने ठीक है सर कोई बात नहीं, एक कहानी लिख देते हैं, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, आप बताइए आपको किस टाइप का आइडिया आपका है। उन्होंने बताया इस टाइप का है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया, वो फिल्म हमने कंप्लीट कर दी सर, और बहुत बेहतरीन हमारी फिल्म बनी वो, लेकिन सब नए आर्टिस्ट थे, पैरा कोई फेमस था नहीं फिल्म के अंदर। आप तो जानते हैं कि पोस्टर के ऊपर जो है वो कम से कम, अगर फिल्म का पोस्टर लगता है सिनेमा हॉल के बाहर, तो उसमें कम से कम कुछ चर्चित चेहरे तो होने चाहिए ना
0: जी जी।
1: तो उस हिसाब से शायद हम उस पिक्चर में भी सही ढंग से सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा उस फिल्म के बारे में, देखिए हीरोज कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे वो शाहरुख साहब की हो, चाहे वो अजय देवगन साहब की हो, या सलमान भाई की हो, बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो करते हैं, अपना एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया, तो उसने मेरी फिल्म को ही सजेस्ट किया
0: जी जी,
1: और मेरी फिल्म को ले लिया उन्होंने, और अब तो जागो को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया हीरोज ने,
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक मेरे लिए कामयाबी वाली बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए।
0: इसके बाद आपने क्या किया?
1: इसके बाद एक शॉर्ट मूवी बनाई, वो मुंबई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मुंबई इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो उसके बाद में मेरी उम्र भर की एक मेरी एक वो थी, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला
0: जी जी
1: 2022 में। उसके बाद में फिर मैंने एक मूवी और बनाई, शॉर्ट मूवी। अब मैं थोड़ा सा मतलब क्या है कि मैं अपने आप को ये करने के लिए, मैं भाई काम तो काम है
0: जी जी जी।
1: फिर उसके बाद में मैंने देवता बनाई सर, देखिए वो देवता भी जो है मेरी चले गई खजुराहो इंटरनेशनल के अंदर, उसको भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल गया
0: जी जी।
1: उसके बाद में सर मैंने अभी फिलहाल मैंने 5 एपिसोड आखिर कौन वेब सीरीज, बहुत प्यारी वेब सीरीज है, और उसके साथ आमिर खान साहब एक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस फिल्म के अंदर, हम लोगों ने वो बहुत प्यारी वेब सीरीज, सस्पेंस वेब सीरीज है, तो वो बन चुकी है, बस अभी हम OTT पे बहुत जल्दी आएगी, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। और अभी तो मेरे काफ़ी प्रोड्यूसरों से मीटिंग चल रही है और काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में।

0: बस अब वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होता है।
1: बिल्कुल
0: सर, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ।
1: जी बताइए।
0: वो ये है कि मैंने तो संघर्ष किया
1: जी,
0: 35 वर्ष संघर्ष किया, संघर्ष क्या होता है ये मुझे पता है। तो सर मैंने एक अपना चैनल बनाया।
1: अच्छा,
0: वन टेक।
1: ओके।
0: और उसमें मैंने ये सोचा कि जो संघर्षशील लोग हैं, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं,
1: यस,
0: उनकी प्रतिभाओं को जो मैं लोगों के सामने लाऊं, तो सर मैं उसमें बहुत कामयाब हो गया। तकरीबन आज समझ लीजिए कि 10 एपिसोड उसके मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
1: जी जी।
0: उसमें मैंने फिरोज बॉस करके एक फाइट मास्टर है, काफी फेमस फाइट मास्टर है और बहुत नेक इंसान है। मैंने सबसे पहले उनका एक प्रोग्राम बनाया, उसके ऊपर उनकी प्रतिभाएं बताई, उसके अंदर उनका इंटरव्यू लिया। देखिए, ये तो एक ऊपर वाले की देन होती है। आदमी अगर सच्चे दिल से अगर मेहनत करता है, लगन करता है, तो ईश्वर उसको जरूर कामयाब करता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर से मुंबई जो फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल के अंदर उस एपिसोड को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया।
1: अरे वाह,
0: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। फिर मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं अभी मतलब मेरा एक प्रोग्राम आता है जो मैं नई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे भारतवर्ष में, भारत देश के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं और जिनकी प्रतिभाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनका प्रोग्राम बनाऊं, दर्शकों तक मैं वो पहुंचाऊं। तो मैं ये काम भी करता हूं और निःशुल्क करता हूं सर, और मैं उसमें कामयाब भी हूं, और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी कामयाबी मिलेगी।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप आए और अपने सफर के बारे में आपने अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने का।
0: धन्यवाद।
2: ओ लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। ओ काले कुर्ते वाली।

0: फिल्म निर्देशक इकबाल अली से बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: अंगना में बाबा द्वारे पे मां।
0: रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगली।
2: कैसे आए गौरी हम तोहरे घर मां।
0: प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अनंत।
1: हेलो नीरजा, आज कैसे भूल पड़ी?
0: भूलती ही कब हूँ, हर पल तो आके तुम्हें ही खोजा करती हूँ। न जाने तुम्हारी सांवली सलोनी सूरत में कैसा आकर्षण है कि सांसों की बंसी तुम्हारे ही नाम को तैरती रहती है।
1: बस बहने लगी ना भावलोक में।
0: सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग खरीदी है, देखो। सुन, आज शाम पिक्चर देखने चलोगे?
1: मेरा आज तो आर्ट्स फैकल्टी में लेक्चर है।
2: ओ डार्लिंग, तुम तो हर समय व्यस्त रहते हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, कितने सपने सजाती हूँ, पर तुम पर कोई असर नहीं होता। The pain of loving you is almost more than I can bear.
1: मुझे देर हो रही है, तुम्हें कोई खास बात करनी है?
0: कहने को तो बहुत कुछ है ना। कल रात मैंने एक सपना देखा, तुम गुलाब का एक फूल लाए हो और चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कहने लगे, नीरजा ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? सच, उस समय मैं कितनी खुश थी, जैसे फूल पत्ती के प्रेम पर जिंदा रहता है ना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी। काश ये सपना असली होता।
1: सपना वही देखते हैं जो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते।
2: गलत।

0: जिसे प्रेम करता है वही उसका सपना देखता है।
1: ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्रेम करती हो?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम्हें गलत फहमी है।
0: मुझे वो भी प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारी ही दी हुई है।
1: ये तुम्हारे अनुराग की चरम सीमा है नीरजा, जो सत्य को जानते हुए भी तुम अनंत की ओर बढ़ रही हो।
0: क्या करूं, अनंत पथ कामी जो ठहरी।
1: तुम्हें समझाना मुश्किल है।
0: एक बात मानोगे?
1: क्या?
0: कल शाम हमारे कॉलेज के सालाना जलसे में मेरा डांस का प्रोग्राम है, आओगे ना?
1: कल तो मैं बहुत बिजी हूँ।
0: प्लीज कैसे भी आइए।
1: देखो मैं मजबूर हूँ। ओके, फिर मिलेंगे।
0: निष्ठुर। अरे हाय, सुनिए तो आनंद जी, दिल तोड़ दिया बिचारी का। दर्शन के प्यासे दो लोचन, बिन देखे अफुलाते, हर सिंगार के फूल से सपने पलछिन में मुरझाते।
2: देख झरना, मुझे तंग मत कर, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है।
0: इसीलिए तो कहती हूँ, प्रीत किए दुख होए।
2: दुख हो या सुख, मुझे अनंत से प्रेम है।
0: बस जब देखो अनंत अनंत अनंत, इसका कोई अंत भी है? जब उसे तेरी कोई चिंता नहीं तो तू उसके लिए क्यों इतनी व्याकुल रहती है? नहीं मानता तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
2: कब तक नहीं मानेगा? मैं इंतजार कर सकती हूँ।
3: अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो?
2: ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं अपनी पूजा, भक्ति और लगन से उसे जीत लूंगी। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो उसे एक दिन बदलना ही पड़ेगा।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहला प्रेम है ना, पर ज्यादा भरोसा मत करना।
2: तू नहीं जानती झरना, पहला प्रेम गले में बंधी उस घंटी की तरह होता है जो बस हर समय कानों में बजती ही रहती।
3: तुम घंटी बजाओ और वेटर को बुलाओ।
2: अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम कुछ लोगी?
3: कुछ नहीं, बस मुझे घर तक लिफ्ट दे देना।
2: अच्छा आओ चले।
4: नीरा जी।
0: कौन है?
4: वही आपका रोमियो।
0: ओ, आप क्या कहना चाहते हैं?
4: कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर यह कमबख्त दिल कुछ धड़कता सा है। सच तो यह है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ फूल सा जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
0: मिस्टर रूप, मालूम होता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगे हैं।
4: करेक्ट, पर यह मेरे दिल की फिल्म है जिसे सिर्फ आप ही अपने मन की आंखों से देख सकती हैं। आप ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है?
0: मित्रता का अर्थ प्रेम नहीं होता मिस्टर रूप, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं कुछ हद तक आपको पसंद भी करती हूँ, पर प्रेम नहीं।
4: पसंद और प्रेम दोनों में थोड़ा ही फासला होता है। पसंद का दूसरा नाम ही कशिश है और जहाँ कशिश है वहीं मोहब्बत है।
0: ये आपका फलसफा हो सकता है
4: मगर सच
0: नहीं, एकदम गलत। मुझे आपसे प्रेम नहीं है।
4: कल शाम मिलोगी? नहीं,
0: मेरा डांस का प्रोग्राम है। सॉरी, अब आप जा सकते हैं।
4: हाय, किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए।

0: चलो नीरजा,
1: तुम यहाँ भी
0: जहाँ तुम वहाँ।
1: मेरा ख्याल छोड़ दो,
0: मैं तो बधाई देने आया हूँ।
1: किस बात की?
0: नृत्य की सफलता पर।
1: ओह धन्यवाद।
0: सुनिए, ये कुछ फूल आपके लिए लाया था।
1: ओह, मुझे देर हो रही है, चलो धरना।
2: कुछ भी हो, रूप है दिलचस्प आदमी।
1: तुझे बहुत पसंद है तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती?
2: अगर वो मुझे इतना चाहता जितना तुम्हें चाहता है तो जरूर कर लेती। क्या कमी है उसमें? हर बात में A1 है।
1: A1 हो या टॉप ग्रेड, मुझे तनिक पसंद नहीं, मुझे तो उससे नफरत है।
2: चलो नफरत ही सही, कुछ तो है तुम्हारे दिल में उसके लिए। बेचारा कितने अरमान रखता है।
1: देख झरना, अगर तुझे रूप की तारीफ करनी है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ, अनंत के घर बाद में जाऊंगी।
2: अच्छा भी, चुप हो गई। पानी में रह के मगर मुझसे बैर कौन करे?
1: मैं मगर हूँ,
2: यू सिली गर्ल।
1: लो वो आ गया तुम्हारे चेहरे का बंगला।

0: रामू
1: जी,
0: अनंत बाबू हैं?
1: जी नहीं, और वो तो पिक्चर देखने गए।
0: अकेले?
1: जी नहीं, साथ में एक थी।
0: थी? नाम?
1: नाम तो मालूम नहीं, पर
0: ठीक है। अनंत जी आए तो कहना मैं आई थी।
1: जी अच्छा।
0: ओह छना, अब तुम गाड़ी ड्राइव करो, मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया है।
2: और कहीं गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो
0: फिर मजाक।
2: वो तो मेरी आदत है। सच, तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है, हो सकता है नौकर को सही बात ना मालूम हो।
0: प्लीज झरना ड्राइव कर, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अनंत, ये तुमने क्या किया? मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा प्रेम क्षण भर में ठुकरा दिया। तुम नहीं जानते अनंत, नारी जीवन में सिर्फ एक पुरुष को ही प्रेम करती है, उसी को अपना इष्ट, अपना देवता मानती है। मैंने संपूर्ण निष्ठा से तुम्हें चाहा, तो समझ में नहीं आता कि तुम उसे क्यों रूठ गए, क्यों रूठ गए। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं तुम्हें नहीं पा सके। पाना या न पाना तो भाग्य की बात है, पर तुम्हें बुला देना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं।

0: नीरजा।
1: हेलो।
0: तुम अभी घर आई थी?
1: हाँ।
0: कोई खास बात?
1: वही तो मुझे पूछनी है।
0: कौन सी बात?
1: वही जो तुम बताना नहीं चाहते।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं।
1: पिक्चर किसके साथ गई थी?
0: ओ, तो ये बात है।
1: कौन है वो लड़की?
0: मेरी मंगेतर।
1: तो मैं क्या थी अब तक?
0: एक मित्र।
1: तुमने मुझे धोखा दिया।
0: गलत।
1: तुम विश्वासघाती हो।
0: ये तुम्हारा भ्रम है।
1: सत्य को भ्रम कहते हो?
0: नहीं, भ्रम है तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारा एक मित्र था और आज भी एक मित्र हूं।
1: ठीक है, ठीक है, पर तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे अंधेरे में क्यों रखा?
0: तुम कल्पना के पंखों पर उड़ती रही तो मैं क्या करता? मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा भी की, पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। आखिर मुझमें क्या कमी थी जो तुमने मुझे से शादी नहीं की?
0: जानना चाहती हो?
1: हाँ।
0: तुम अति आधुनिक और स्वच्छंद हो। पति को सिर्फ तुम एक बैनर समझती हो। मुझे घर से प्यार करने वाली पत्नी चाहिए मिर्जा, फैशन की गुड़िया या मॉडल नहीं।
1: गलत है आनंद, गलत है। आई एम होम लविंग।
0: फिर तुम्हारा रूप से भी प्रेम है। राकेश के साथ भी मैंने तुम्हें कई बार घूमते देखा है।
1: वो तो सिर्फ मेरा एक मित्र है और कुछ भी नहीं।
0: मित्र है तो तुम्हारे चक्कर क्यों काटता है? तुम भी तो बहुत घुलमिल कर बातें करती हो उससे।
1: तुम्हें भ्रम है आनंद, भ्रम है। अगर मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें।
0: ये तुम्हारा ढोंग है।
1: चाहे दुनिया से सच्चाई उठ गई है, वरना तुम कभी ऐसा नहीं कहते।
0: दुख का राग अलापने से सुख नहीं मिलता नीरजा। जीवन की राहें बहुत लंबी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे युवक से विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ सदा के लिए।
1: ये तुम कह रहे हो आनंद, तुम कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी।
0: सुनो तो नीरजा, नीरजा।

0: ना तो नहीं देख रहा?
1: जी नहीं, ये हकीकत है। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना रूप।
0: जी
1: मैं मानती हूँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उपेक्षा की, अपमान किया।
0: लेकिन
1: काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं कभी तुम्हारा दिल ना दुखाती।
0: कुछ मेरी बात भी तो सुनिए।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन कॉलेज के सालाना जलसे में तुम मुझे फूल देने आए थे और मैं ठुकरा कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो रूप।
0: बस करो नीरजा, तुम कहना क्या चाहती हो?
1: मुझे तुमसे हमदर्दी है।
0: बस
1: मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
0: बस
1: मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
0: काश ये इरादा तुमने पहले कर लिया होता। अब बहुत देर हो चुकी है और मैं एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस नीरजा। अरे सुनिए सुनिए, तो मेरी शादी का कार्ड तो लेती जाइए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक थोड़ी ही देर बाद प्रस्तुत होगा आपके बीच में।

हम सुन रहे थे ये गीत यंगिस्तान फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कौशर मुनीर ने इसे लिखा और जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: हम सुन रहे थे पीके फिल्म का यह गीत। शान और श्रेया घोषाल ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और शांतनु मोइत्रा ने इसे संगीतबद्ध किया। सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर के बोलों के साथ, अनु मलिक के संगीत के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फते है पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, ये देख कैसे?
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका,
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
8: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: I know na.
10: RBI कहता है,
11: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
12: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
13: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
12: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
14: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
15: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
16: RBI कहता है,
17: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम सुन रहे थे यू मी और हम फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। मुन्ना दीमान ने इसे लिखा और विशाल भारद्वाज ने इसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम चित्रलोक का यह अंतिम गीत।

हम सुन रहे थे स्वदेश फिल्म का यह गीत एआर रहमान की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और एआर रहमान के संगीत के साथ। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी।

0: खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

0: सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप

0: स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए। मैं आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ, जिसे लिया गया है गजल फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, मदन मोहन का

0: वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज़ में कैफी आज़मी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, एक नगमा आपके नाम किया। चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज़ की आवाज़ें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत है।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अज़ीज़ की आवाज़ में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गज़ल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गज़ल, मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं और आर डी वर्मन का है संगीत।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
6: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
7: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद इज ऑल्सो प्रिबिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूज़िक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

0: पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, ज़िद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया।
1: क्या
0: हाँ,

वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रहे हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा है?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शामता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज अ तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था। ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

0: विविध भारती छाए गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विक्को वज्रदंती, भारत का कम एक्सपर्ट।
2: देखो टर्मरिक

पेशी खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जो वो आ जाए तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

शाम का ढलना वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस रात हो गई।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज़े दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

मचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं। ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

0: सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन

0: PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ 91.9 MHz पर यह आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है, FM रेडियो लेक्स सिटी। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।

कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।